You are listening to Radio Olive 106.3 FM.

Radio Olive. 106.3 Radio Olive. Jio Bindas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

धुरंधर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: धुरत दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

0: आप सभी को एक सुपर डुपर गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हो रेडियो 106.3 FM और बिंदास मॉर्निंग्स में मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई स्टेशन क्लॉक में 6:06 हो रहे हैं और यहाँ पे आपके साथ बात करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए, गाने सुनाने के लिए, गुनगुनाने के लिए, किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करने के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताने के लिए हम यहाँ पे आ चुके हैं, क्योंकि उसके साथ साथ बहुत प्यारे प्यारे गाने भी आपके लिए हम लेकर आए हैं।
1: जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना।
0: और सोनू निगम का एक बहुत ही बढ़िया दमदार सा ट्रैक भी आएगा आपके रेडियो सेट पे थोड़ी ही देर में।

अभी तत्काल प्रभाव से तुरंत से पहले अभी के अभी आप अपने गुड मॉर्निंग मैसेजेस भेज दीजिए 3311063 पर मैसेज कीजिए, मुझे बताइए क्या हाल है, कैसा चल रहा है सब कुछ, आज के दिन के क्या इरादे हैं, क्या इंटेंशन है बाबू, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब बातें। तो मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करता हूँ, आप अपने मैसेजेस शुरू कीजिए, गाने का सिलसिला यहाँ पे शुरू होने वाला है, तो कुर्सी की बेटी बांध लीजिए क्योंकि बाबू मोशाए मॉर्निंग सिर्फ गुड नाइट बिंदास होनी चाहिए। स्टे ट्यून्ड, ये है रेडियो ऑलिव 106.3 FM और मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव जियो बिंदास।

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स। कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: हाय गाइस, दिस इज जुरिता गांधी। रेडियो ऑलिव, आई एम नंबर 1। यू आर लिसनिंग टू मी ऑन रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास। रेडियो
3: ऑलिव, आई एम नंबर 1। ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर 1 एशियन रेडियो नेटवर्क।
4: आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में। बिंदास
5: मॉर्निंग, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
6: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

0: दंगल मूवी का गाना हमने सुना अरिजीत सिंह की आवाज में। आप सुन रहे हो बिंदास मॉर्निंग्स ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और भाई यहाँ पे हमारे पास आए हैं मैसेजेस, थोड़े तो जरा एक एक करके पढ़ लेते हैं। अभी कमरनिसा जी का मैसेज आया है और उन्होंने लिखा है, बिंदास गुड मॉर्निंग रेडियो स्टार्स, नो स्ट्रेस नो लिमिट्स, जस्ट प्योर एनर्जी ऑन द माइक एंड मेक दिस मॉर्निंग एब्सोल्युटली अनफॉरगेटेबल। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया एक एनर्जी जो है आपके मैसेज से भी आई है। आपको भी काफी बढ़िया और बिंदास दिन में विश करता हूँ। उसके साथ साथ मुझे सबिया साची जी का मैसेज आया है, उन्होंने लिखा है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, आई होप सब बढ़िया चल रहा है, बताइए क्या हाल है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका दिन जो है काफी बिंदास जाए। और ऋषीन का मैसेज आया है और ऋषीन ने एक फोटो भेजा है, उसमें लिखा है, सनराइज पेंट्स अ सिम्फनी ऑफ कलर्स इन द स्काई, मे योर डे बी जस्ट एज वाइब्रेंट, गुड मॉर्निंग जियो बिंदास करके। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। आपको भी काफी वाइब्रेंट मॉर्निंग में विश करता हूँ और जियो बिंदास। और जुल्फी भाई का मैसेज आया है, उन्होंने भी एक फोटो भेजा है हमें और उस फोटो में लिखा है, सक्सेस सीम्स टू बी कनेक्टेड विद एक्शन, सक्सेसफुल पीपल कीप मूविंग, दे मेक मिस्टेक्स बट दे डोंट क्विट। बहुत ही बढ़िया बात कही आपने, काम करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है सक्सेस के लिए। अगर हमें आगे बढ़ना है तो अपने एक्शंस की ओर हमें फोकस ज्यादा देना पड़ेगा, रिजल्ट्स की ओर नहीं। रिजल्ट्स की ओर सोच के बैठेंगे तो कुछ नहीं होगा, एक्शन पे फोकस करो तो हम आगे बढ़ेंगे। अबरार भाई का भी मैसेज आया है, उन्होंने भी एक फोटो भेजा है और उसमें भी लिखा है, गुड मॉर्निंग करके। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। आपको भी काफी बढ़िया और बिंदास दिन में विश करता हूँ। और साथ ही साथ शशिकांत पाटिल जी का भी मैसेज आया है, उन्होंने लिखा है, गुड मॉर्निंग, नो एलोपैथी नो होम्योपैथी और आयुर्वेदिक, द ग्रेटेस्ट थेरेपी इज फ्रेंडशिप एंड लव। वाओ वाओ, बहुत क्यूट बात कही है। सच बताए तो अगर हम मेंटली ठीक है, यानी कि अच्छे एक कंपनी में है, अच्छे दोस्तों के एक इसमें विसिनिटी में है, सब ठीक चल रहा है, तो हमें ज्यादा इलाज करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम खुश रहते हैं। और जब हम खुश रहते हैं तो हम अच्छे होते हैं, और जब हम अच्छे होते हैं तो सेहत भी बहुत अच्छी होती है। उसके साथ साथ मोहम्मद असलम भाई का मैसेज आया है, उन्होंने भी एक फोटो भेजा है और इस फोटो में बहुत ही प्यारा सा एक चित्र बना हुआ है जिसमें एक फूल है और फूल की एक डंडी से जो है थोड़ा सा एक चिड़िया ऐसे बैठी हुई है और उसके नीचे गुड मॉर्निंग लिखा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपको भी काफी बढ़िया प्यारा और बिंदास सा एक मॉर्निंग में विश करता हूँ। और नाजनी जी का मैसेज आया है, नाजनी जी ने लिखा है, राइज एंड शाइन, टुडे होल्ड्स एंडलेस पॉसिबिलिटीज फॉर यू, गुड मॉर्निंग करके। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। आपको भी काफी बढ़िया दिन मैं विश करता हूँ, बिंदास दिन विश करता हूँ। और थोड़ी ही देर में गानों के उस पार जब हम आएंगे तो हम चेक करेंगे कि आप पांचवीं छठी सातवीं आठवीं नवीं दसवीं इन सबसे कितने तेज हैं। फिलहाल यहाँ पे कूल सॉन्ग ऑफ द आवर प्ले करते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। Awesome.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। आज यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा सवाल पूछने के लिए मैं पहुंच चुका हूँ, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है। तो चलिए, ब्लैक बोर्ड स्टोरीज में वो दिन कौन सा है और वो सवाल कौन सा है सब मैं बताता हूँ।
1: रेडियो ऑलिव प्रेजेंट्स ब्लैक बोर्ड स्टोरीज।
0: ओके, सो सवाल सुनने से पहले कॉन्टेक्स्ट जरा मैं सेट कर देता हूँ। देखिए, आज है वर्ल्ड बी डे और बीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए, प्लैनेट में लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा क्यों है वो सब मैं आपको बाद में बताता हूँ, मगर पहले सवाल पूछ लेता हूँ। जैसे कि हम सब दुनिया में रंग देखते हैं ना, बहुत सारे रंग हम देखते हैं, नीला, पीला, लाल, गुलाबी, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट रंग जो है हम देख लेते हैं। तो सवाल ये है, ऐसा कौन सा कलर है जो हनी बीज के लिए इनविजिबल है या फिर वो देख नहीं पाते हैं। मैं ऑप्शंस देता हूं, उन ऑप्शन में से आपको बताना है, ध्यान से सुनना। सवाल ये है, ऐसा कौन सा कलर है जो हनी बीज के लिए इनविजिबल है। ऑप्शन ए है येलो, ऑप्शन बी है रेड। एकदम से मैं स्विच कर गया, ऑप्शन ए है येलो और ऑप्शन बी है रेड। तो इन दोनों में से कौन सा कलर है जो हनी बीज को इनविजिबल होता है, जो नहीं देख पाते, ये आपको बताना है मुझे। आप मैसेज कर सकते हैं 3311063 पर तत्काल प्रभाव से, तुरंत से पहले, अभी के अभी। देखते हैं कि आप पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं, इन सबसे कितने तेज हैं। फिलहाल यहाँ पे मोहित चौहान और अंतरा मित्रा की आवाज में राजनीति का गाना सुनते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: Presents CB 2026 Million Reals Dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर. मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा.
3: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहाँ पे मैं दो चीजें बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं माफी मांगना चाहूंगा कि मैंने डेट गलत पढ़ लिया था। बी डे एक्चुअली 20th को है, और मेरे मन में था कि आज 20th है, इसलिए कहते हैं कि ज्यादा स्क्रीन टाइम हो गया तो ब्रेन फॉग हो जाता है। ओके, वैसे सवाल हमने बी रिलेटेड ही पूछा था। सवाल मैंने ये पूछा था कि ऐसा कौन सा कलर है जो बीस के लिए इनविजिबल होता है, हनी बी के लिए इनविजिबल होता है। ऑप्शन ए मैंने दिया था येलो, ऑप्शन बी मैंने दिया था रेड। और यहाँ पे हमारे पास जो है मैसेजेस आए हैं, एक एक करके देखते हैं। ऋषिन ने मैसेज भेजा है, ऋषिन ने बोला है रेड है कलर। उसके साथ साथ मुझे मिस्टर देव ने मैसेज किया है, उन्होंने बोला है आंसर इज ऑप्शन बी। इरफान भाई ने मैसेज किया, उन्होंने बोला है ऑप्शन बी रेड। और मुझे मेहरुनिसा जी ने पूछा कि गुड मॉर्निंग सुदेव, कशिश कहाँ है आज? जी कशिश आज दूसरे टाइम में आएगी, कोई टेंशन नहीं। और सेम क्वेश्चन मुझे कमरनिसा जी ने भी पूछा है, कशिश कहाँ है, वेयर इज कशिश टुडे? कशिश आएगी बट थोड़ा लेट आएगी, 8 बजे के बाद वो आएगी। और उन्होंने जवाब भी दिया है, 20 के लिए रेड लाइट सबसे ज्यादा इनविजिबल कलर होता है, और यूवी लाइट ह्यूमंस के लिए इनविजिबल होता है, लेकिन 20 के लिए विजिबल होता है। बिल्कुल सही, सही जवाब, सटीक जवाब, और सबने बिल्कुल सही जवाब दिया, इसलिए हम क्या करेंगे, तालियां बजाएंगे। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए। और संधु जी का मैसेज भी आया है, गुड मॉर्निंग ब्रो, हैव अ नाइस डे, हरपाल संधु फ्रॉम दुकान। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, आपको भी काफी बढ़िया दिन मैं विश करता हूँ। और उसके साथ साथ यहाँ पे फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर सुनते हुए आगे बढ़ते हैं, गाने सुनते हैं, चिल करते हैं एक साथ बैठकर, और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर Song of the Hour। ये गाना

0: सूरत दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओनली 106.3 एफएम जियो बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल एफ 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई स्टेशन क्लॉक में 7:08 हो रहे हैं और यहाँ पे जो है हम मौसम का हाल जो है बताना चाहेंगे। आज की तारीख में अभी का टेम्परेचर जो है 29 डिग्री सेल्सियस का हो रहा है और आज का हाईएस्ट टेम्परेचर होगा 43 डिग्री सेल्सियस और लोएस्ट टेम्परेचर ऑब्वियसली जो अभी है वही होगा विच इज 29 डिग्री सेल्सियस। और आज की हवा जो है 7 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बह रही है, यानी कि ताला फॉर अ रीजन। लेकिन चेन्नई कल आ गई, डिटेल में बात भी करेंगे। बट या आपके लिए भाई मौसम कैसा है बाहर जरा मुझे बताइए, आसमान कैसा है, बादल कैसे हैं, नजारे कैसे हैं, फोटो खींचिए, भेजिए हमें 3311063 पर, बताइए हमें कैसा लग रहा है सब कुछ और फोटोज भेजिए तत्काल प्रभाव से, तुरंत से पहले अभी के अभी। यहाँ पे फाहिल अब्दुल्ला की आवाज में चांद मेरा दिल सुनते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 7:18 हो रहे हैं और यहाँ पे जो है हम देखते हैं जो मैसेजेस हमारे पास आए हैं, हमें फोटोज भेजे हैं। सामी भाई ने जो है हमें फोटो भेजा है, काफी प्यारा जो है उन्होंने फोटो भेजा है, एक बहुत ही बढ़िया फोटो यार, मतलब मजा आ गया देख के। तस्वीर का फोटो खींचा है उन्होंने, मतलब उसमें जो बीट बना हुआ है वो काफी अच्छा लग रहा है। सामी भाई थैंक यू सो मच ये फोटो भेजने के लिए, सही में देख के बहुत अच्छा लगा मुझे, दिल को भी काफी सुकून आया। और थैंक यू सो मच, अनिल जी ने मुझे फोटो भेजा है, दीपक जी ने मुझे फोटो भेजा है, सब ने बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से अपने पार्क्ड कार से जो है एक फोटो भेजा है। और मुझे लगता है अहमद जी ने अपने ऑफिस का रास्ता मुझे दिखाया है फोटो भेज के। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, ऐसे फोटोज भेजते रहिए, बाहर के नज़ारे हमें दिखाइए, क्योंकि हम तो स्टूडियो के अंदर हैं, हमें दिखेगा नहीं ना अंदर बैठ के बाहर क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है सब कुछ, तो हमारी आंखें बनकर जो नज़ारे आप दिखाते हैं तो अच्छा लगता है ना। वो होता है ना कि जब लोग कुछ अच्छा करते हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें भी बहुत अच्छा लगता है, जो लोग करते हैं उनको भी बहुत अच्छा लगता है, इवेंचुअली सबको अच्छा लगता है। वही तो चाहिए भाई, छोटी छोटी चीजों में जब खुशियां मिलती हैं तो बड़ी बड़ी चीजों की खुशियों से भी ज्यादा डेप्थ तक हमें छू जाती हैं। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं, जबरदस्त हिट्स प्ले करते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
3: The big biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry.
4: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
5: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
6: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहाँ पे भाई फिट है तो हिट है, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करने का वक्त आ चुका है, तो चलिए शुरू करते हैं।
1: फिट है तो हिट है।
0: तो भाई फिट है तो हिट है में आज हम बात करेंगे ईटिंग डिस्ट्रैक्शंस और कैलोरी इनटेक में क्या ताल्लुक है, क्या रिश्ता है उनके बीच में। ये कहा जाता है कि ईटिंग डिस्ट्रैक्शन कैलोरी इनटेक को बढ़ा सकता है, और वो कैसे बढ़ा सकता है। रिसर्च ये दिखाती है कि जब हम टीवी, फोन या लैपटॉप देखते हुए खाना खाते हैं तो ब्रेन का अटेंशन फूड पर फुली नहीं होता। इससे बॉडी को जो सेटिस्फैक्शन या फिर कंटेंटमेंट के जो सिग्नल्स होते हैं, सैचिटी के जो सिग्नल्स होते हैं कि पेट भर गया, ये प्रॉपरली नोटिस नहीं हो पाते। और नॉर्मली माइंडफुल ईटिंग के दौरान जो है हम च्यूइंग, टेस्ट, पोर्शन साइज, फुलनेस सिग्नल, इन सब में हमारा ब्रेन जो है फोकस करता है। लेकिन जब स्क्रीन डिस्ट्रैक्शन का एक इंटरवेंशन आ जाता है तो ब्रेन का फोकस जो है वो स्प्लिट हो जाता है, जिससे लोग जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम कर लेते हैं और बाद में भी जल्दी हंग्री फील कर सकते हैं। अब स्टडीज ने यह भी ऑब्जर्व किया है कि डिस्ट्रैक्टेड ईटिंग के दौरान लोगों को याद भी कम रहता है कि उन्होंने कितना खाया था, जो लेटर स्नैकिंग को इंक्रीज भी कर सकता है। इसका एक बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, मील के टाइम पे स्क्रीन फ्री ईटिंग का एक रूल बना लीजिए, आप आराम से चबा के खाइए खाने को और फूड पर अवेयरनेस मेंटेन कीजिए। मोटी मोटी बात यही है कि भाई जब स्क्रीन पर अटेंशन होता है, बॉडी के फुलनेस सिग्नल्स बैकग्राउंड में चले जाते हैं और ओवर ईटिंग जो है काफी इजीली हम कर लेते हैं। तो इस बात पे ध्यान देना है, और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू रेडियो ऑलवे 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहाँ पे जो है भाई जीसीसी गेम्स के बारे में एक अपडेट जो है मैं आपको देना चाहूंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। अली अल उबेदली ने गोल्ड जीता 15 रेड स्नूकर सिंगल्स इवेंट में, फोर्थ जीसीसी गेम्स दोहा 2026 में। फाइनल में इन्होंने सऊदी अरेबिया के जियाद अल कबानी को 3-0 से सीधे सेट्स में हराया। उनका टूर्नामेंट परफॉर्मेंस काफी डोमिनेंट रहा। क्वार्टर फाइनल में यूएई के मोहम्मद शहाब को 3-1 और सेमीफाइनल में कुवैत के अहमद अबू को 3-0 से डिफीट किया। और अल उबेदली के लिए ओवरऑल ये फोर्थ मेडल था इस एडिशन में, और पहले भी उन्होंने बिलियर्ड्स और स्नूकर इवेंट्स में गोल्ड और सिल्वर मेडल्स जीते थे। अब कतर का जो ओवरऑल मेडल टैली है वो टॉप पोजिशन पर मेंटेन करते हुए 110 मेडल्स तक पहुंच चुका है, जिसमें 40 मेडल्स जो है वो गोल्ड मेडल्स हैं। सऊदी अरेबिया सेकेंड पर है और बहरीन थर्ड पोजिशन पर है। शूटिंग, पैडल और स्नूकर जैसे इवेंट्स में भी कतर ने काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस जो है दिखाया है, और प्लेयर्स ने काफी एक्सेलेंट और बढ़िया तरीके से खेला है और अपने विनिंग स्ट्रीक को मेंटेन कर रखा है। और यही बात बताते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Commercial Bank presents CB 2026 Million Rials Dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: The big. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
3: Joyalukkas, world's favorite jeweler.

0: तो धुरंधर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और भाई यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे कल के मैच के बारे में। दिल का दरिया बह ही गया, क्या बताऊं यार मैं। मतलब पूरा जो आईपीएल का रोस्टर है वो चाहता है कि चेन्नई ऊपर आ जाए, मगर चेन्नई नहीं चाहती चेन्नई ऊपर आ जाए। और कल के मैच में अगर हम बात करें तो काफी डिसेंट खेला चेन्नई ने। मैं ये नहीं बोलूंगा कि चेन्नई ने बुरा खेला, 180 का टारगेट दिया विच इज अ डिसेंट टारगेट, और 181 जो है हैदराबाद ने स्कोर किए और 5 विकेट से वो मैच जीत गए। और यहाँ पे अगर हम बैटिंग की बात करें तो संजू सैमसन ने 27 रन बनाए चेन्नई के लिए, और कार्तिक शर्मा ने 32 और डेवाल्ड ब्रिविस ने 44 रन बनाए। ईशान किशन ने 70 रन स्कोर किए, हेनरिच क्लासन ने 47 और अभिषेक शर्मा ने 26 रन स्कोर किए। तो काफ़ी इजीली जो है हैदराबाद जो है मैच अपने साइड पर ले गई। मगर यहाँ पे एक और बात बतानी पड़ेगी, 5 विकेट गिर गए थे हैदराबाद के, तो बीच में थोड़ा सा प्रेशर जो है बॉलिंग के थ्रू चेन्नई ने डालने की कोशिश जरूर की थी, मगर जो है वो प्रेशर उतना यूजफुल नहीं रहा। अच्छे से जो है वो लोग खेल के निकल गए, अच्छे अच्छे स्कोर जो है उनके टॉप ऑर्डर ने बनाए थे। और मैंने कल यही बोला था कि अगर चेन्नई की टॉप ऑर्डर अच्छा खेल जाती है, अच्छी तरीके से परफॉर्म कर जाती है, तो गेम उनके हाथ में रहेगा। अनफॉर्चुनेटली चेन्नई के टॉप ऑर्डर ने नहीं खेला और मेरा दिल टूट गया। क्या करें यार, हम काफी सिंपल इंसान है, चेन्नई जीतती है खुश होते हैं, चेन्नई हारती है तो फिर दुखी हो जाते हैं। मगर कोई गल नहीं, खेल की बात है, हार जीत होती रहती है। यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं, आज कौन सा मैच होने वाला है उसके बारे में बताएंगे डिटेल में। अभी फिलहाल यहाँ पे कूल सॉन्ग ऑफ द आवर सुनते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: Radio Onyx, your happiness frequency.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
0: शैकमैन की पावर पैक्ड रेंज, हेवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स. दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कारमिल के साथ. विजिट कारमिल ग्रुप नाउ. Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
0: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

बंटी और बबली मूवी का गाना। एक टाइम पे मुझे लगता है हर एनुअल फंक्शन, सोसाइटी के फंक्शन में ये गाना बहुत ज्यादा चला है। वेलकम बैक, यू आर लिस्निंग टू बिंदास मॉर्निंग्स ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 8:26 हो रहे हैं और यहां पे जो है हम आज के मैच के बारे में बात करते हैं। आज जो है मैच है राजस्थान और लखनऊ के बीच में, ठीक है। अब ये मैच में क्रूशियल बात यह है कि राजस्थान जो है 5th पोजीशन में है और ये मैच अगर राजस्थान जीत जाती है तो वो सीधा जा सकती है 4th पोजीशन में, यानी कि टेबल में टॉप 4 में अपना पोजीशन जो है वो बना सकती है। और अगर लखनऊ जीत जाती है तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लखनऊ 10th से 9th पोजीशन में चला जाएगा, मगर राजस्थान के जीतने के चांसेस और कम हो जाएंगे। और चेन्नई और अगला मैच और जीत जाती है और राजस्थान अपना लास्ट मैच भी हार जाती है तो शायद चेन्नई के जीतने के चांसेस बढ़ जाएं। साथ ही साथ पंजाब की जितने बचे मैचेस हैं उसमें भी पंजाब को हारना होगा, तब जाके चेन्नई के चांसेस बचेंगे। बट अगर राजस्थान को जाना है आज उस बार यानी कि 4th पोजीशन में, तो आज का मैच जीतना बहुत क्रूशियल है। और देखते हैं आज के मैच में क्या होगा। अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो 45% जीतने की प्रोबेबिलिटी है लखनऊ की और 55% है राजस्थान की। अब इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी सही होगी, या फिर प्रोबेबिलिटी में कोई बदलाव आएगा, या फिर ये प्रोबेबिलिटी सर्टेनिटी में बदल जाएगी, ये तो मैच देखकर ही पता चलेगा। फिलहाल यहाँ पे अमित त्रिवेदी, नकाश अजीज और एश किंग की आवाज में आयशा मूवी का गाना सुनते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: Radio Olive. 106.3 Radio Olive. Geo Bindas.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
3: The biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
4: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
5: आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में।
6: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
7: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू रेडियो ऑल 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
0: कहां है कशिश, कहां है कशिश, ऐसा पूछा गया था हमसे। मैंने बोला कशिश आएगी। सही में मोहम्मद यूसुफ खान साहब ने पूछा और भी लोगों ने मुझे मैसेज किया। सुबह सुबह जब मैं आया तो लोगों ने मैसेज कर रखा था, हेलो गुड मॉर्निंग सुदेव एंड कशिश, आने से पहले जैसे सिर्फ सुदेव की आवाज सुनी कशिश कहां गई, कहां है कशिश करके।
1: देखिए कशिश आती है, क्या होता है ना कि एज अ गर्ल आपको ना तैयार होने के लिए वक्त चाहिए होता है। एंड जब मैं सुबह सुबह आती हूँ तो मैं जो है रात को जो प्रिपेयर करके रख पाती हूँ, मैं जल्दी से पहनती हूँ और फटाक से आ जाती हूँ। मतलब मुझे टाइम लेना होता है ना खुद के साथ, वो नहीं कर पाती। तो मैं सोचती हूँ कभी कभार थोड़ा वक्त ले लूँ, मतलब एक दो घंटे तो सुदेव को आप अकेले झेल ही सकते
0: हैं। क्या बात कर दी, क्या बात कर दी यहाँ पे। और वैसे भी आते ही काफी बैंगर बातें करते हुए जो है कशिश आ चुकी है। और इसके साथ साथ मैं एक टेक्नोलॉजिकली बैंगर बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ठीक है, एप्पल के iOS iPadOS 27 में AI को काफी एक्सपेंड किया जा रहा है, जिसमें एडवांस्ड राइटिंग टूल्स भी इंक्लूड होंगे जो ग्रामर चेक और टेक्स्ट सजेशन भी करेगा। और यूजर्स को राइट विद सिरी और हेल्प मी राइट जैसे ऑप्शंस मिल सकते हैं, जिससे राइटिंग असिस्टेंस और एक्सेसिबल हो जाएगी। अब देखिए एप्पल के ऐसे मूव से बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, वो तनीषा को धीरे धीरे धीरे फेज आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ना भाई
1: कि
0: अब बिना तनीषा के संगत के तुम इंग्लिश सीखोगे।
1: कशिश और सुदेव को तनीषा की जितनी कम जरूरत पड़े, कोई मेल लिखना होता है भाग के तनीषा के पास चले जाते हैं।
0: यार ये बता दो,
1: कोई रिप्लाई करना होता है सुदेव को किसी लड़की को तो जाके तनीषा के पास चले जाते हैं कि इसको क्या बोलू, क्या बोल रही है, तो ये पूछ रही है इस वर्ड का मतलब क्या होता है,
0: क्या बोल रहा
1: है, का मतलब क्या होता है।
0: इतना मुझे और खुद को पहले ना एक एक ही टेबल में आप मत समझो, ठीक है, थोड़ा तो अलग ही है,
1: थोड़ा तो अलग ही।
0: फ्लैबोगास्टेड का मतलब तो हमें पता है, बट नॉनशैलेंट का नहीं पता था।
1: नॉनशैलेंट आजकल सबसे ज्यादा वर्ड यूज हो रहा है यार। मतलब लड़कियां मौके ढूंढती है नॉनशैलेंट को किसी स्टेटमेंट में डालने के लिए।
0: जी जी मैं समझ सकता हूँ, वो ऐसा वर्ड है जो लोग यूज करना चाहते हैं। और इतना मतलब जाकिर खान ने जब उसके बारे में बताया तो मैं काफी रिलेट कर गया, क्योंकि मेरे साथ भी यही सीन हुआ था। ऐसा नहीं था कि 2G में मैं नेट में मीनिंग ढूंढ रहा था, बट मैंने जब ये नॉनशैलेंट पहली बार सुना तो आई वाज लाइक व्हाट इज दिस, व्हाई इज दिस,
1: मैं हूं और मुझे पता भी नहीं है।
0: हाँ, ऐसा ऐसी चीजें सब। बट ऐसे और भी बहुत सारे अपडेट्स जो हैं एप्पल अपने AI फीचर्स में लेकर आ रहा है, ये सब बातें हम करेंगे धीरे धीरे। मगर यहाँ पे जरा क्या कमाल है सुनते हैं। स्टे ट्यून्ड, ये है रेडियो ऑलवे 106.3 FM।
1: जियो बिंदास।

0: धुरंधर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

0: FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
0: स्टेशन क्लॉक में 9:06 हो रहे हैं और यहां पे जो है काफी बढ़िया लोकल अपडेट जो है मैं आपको देना चाहूंगा। तो आज मैं ऐसे ही अखबार पढ़ रहा था, देख रहा था, तो काफी अच्छी खबर जो मुझे मिली है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कतर ने रेजिलिएंट फूड सिस्टम इंडेक्स में मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन में फर्स्ट रैंक अचीव किया है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट इंपैक्ट। ठीक है, ग्लोबल लेवल पर कतर का परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग रहा है और 20 नेशंस में इंक्लूड हुआ था ये फूड सिस्टम रेडिनेस में। और कतर ने इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस रिलायबिलिटी में भी वर्ल्ड नंबर 1 रैंक और फूड अफोर्डेबिलिटी में वर्ल्ड में 4 रैंक जो है हासिल किया है। और ये अचीवमेंट कतर के नेशनल फूड सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी 2030 के एक सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन का एक रिफ्लेक्शन है। ठीक है, और इंडेक्स में फूड सिस्टम्स की इवैल्यूएशन अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, क्वालिटी, सेफ्टी और क्लाइमेट रिलेटेड रेजिलियंस जो है इन फैक्टर्स को इसमें लिया गया था, नोट पे लिया गया था, जिस पे जो है ये डिसीजन लिया गया है। और ये काफी अच्छा डिसीजन भी है, मुझे भी कई बार लगा है कि फूड के मामले में यहाँ पे भाई बहुत ही अच्छी तरीके से जो है कामकाज को जो है डील किया जाता है।
1: यानी अगर बात हो खेलने की या बात हो खाने की, दोनों में कतर सबसे आगे है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यही बात बताते हुए काम करते हैं सोनू निगम की आवाज में, सुनते हैं गिनी वेट सनी 2 का एक बहुत ही प्यारा गाना। स्टे ट्यून्ड, ये है रेडियो 106.3 FM।

0: Olaf Short Break.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो Ooredoo ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद Ooredoo.
2: Shackman की पावर पैक्ड रेंज, हैवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स. दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कारमिल के साथ. विजिट कारमिल ग्रुप नाउ.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: Hi, I'm Suhali Khan. And you're listening to Radio Olive, Jio Bindas.
5: I'm in number one, Radio Olive.
6: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
7: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
8: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में अभी 9:21 हो रहे हैं और यहां पे आपके पास मौका है मेरे एक सवाल का जवाब देने का और पाने का एक मौका, जहां पे आप सॉल्ट मैंगो ट्री में जाके इंटरनेशनल टी डे के दिन चाय और चर्चा कर सकते हैं। किसके साथ? रेडियो ऑलिव के आरजेस के साथ।
1: इंटरनेशनल टी डे स्पेशल, टी टॉक्स एंड मेमोरीज
2: ब्रॉट टू यू बाय सॉल्ट मैंगो ट्री रेस्टोरेंट। ऑथेंटिक टेस्ट, ग्रेट एम्बियंस एंड बजट फ्रेंडली। मतार कदीम, कॉल 5164800।
0: तो मैं अभी एक मूवी का सीन जो है प्ले करूंगा, ठीक है, और बहुत ही छोटा सा सीन, आपको ध्यान से सुनना है और आपको बताना है कौन से मूवी का सीन है, तो सुनिएगा ध्यान से, ठीक है?
3: क्यों, ये भी तो पार्टी है। तुम, मैं और दो कप चाय।
0: तुम, मैं और दो कप चाय। मैं क्लू दे देता हूँ, कोनकोना सेन शर्मा और रणबीर कपूर है इस सीन में, जिसमें रणबीर कपूर के डायलॉग को मैंने आने नहीं दिया, ठीक है। कोनकोना सेन शर्मा ने बोला है, कौन से मूवी का गाना है ये आपको बताना, कौन से मूवी का डायलॉग है ये आपको बताना है। मैं भी जरा हो गया बीच में ये डायलॉग सुन के, काफी मेस्मराइजिंग सा सीन है वैसे। तो ये सीन कौन से मूवी से है ये आपको बताना है 3311063 पर मैसेज करके। आप मुझे ऑडियो नोट भेज सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं। लकी विनर के पास मौका है सॉल्ट मैंगो ट्री जाके टी डे के दिन चाय पीना और हमारे साथ चिल करने का। तो यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और जबरदस्त हिट प्ले करते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
4: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

0: उदित जी और अलका जी की आवाज में तेरे नाम मूवी का गाना हमने सुना। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल इन 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 9:34 हो रहे हैं और यहाँ पे जो है हमारे पास जवाब पे जवाब आए हैं। मेरे को मैसेज भेजा है ज्वेला ने, उन्होंने बोला है दिस सीन इज फ्रॉम द मूवी वेक अप सेट। और शिवा भाई ने मैसेज किया है, उन्होंने बोला है गुड मॉर्निंग फ्रॉम द मूवी वेक अप सेट। शिवा फ्रॉम अलखोर, थैंक यू सो मच भाई। और उसके साथ साथ मुझे मनोज भाई का मैसेज आया है। मनोज भाई ने लिखा है गुड मॉर्निंग रेडियो ऑलिव, टेकन अ लीव टुडे एंड केम फॉर अ वॉक एट एस्पायर पार्क नियर विलाजियो मॉल। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट आई एम लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव ऑन मोबाइल ऐप। थैंक यू सो मच भाई, यही तो प्यार है, यही प्यार है, थैंक यू सो मच। और अजय भाई ने मैसेज किया है वेकअप सेट, भूवी जी ने मैसेज किया है वेकअप सेट, और तस्लीम ने मैसेज किया है वेकअप सेट, रेहान ने मैसेज किया है वेकअप सेट, और उसके साथ साथ अंसल में मैसेज किया है, उन्होंने भी बोला है वेकअप सेट। तो सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, तो आपके लिए बजेंगी तालियां। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और मैं यही बताना चाहूंगा कि जो भी हमारे विनर हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो भी हमारे विनर होंगे उनको सीधा सीधा कॉल आ जाएगा हमारे ऑफिस से। और आपके पास मौका है टी डे में जाके, मतलब टी डे के दिन सॉल्ट मैंगो ट्री में जाके एंजॉय करने का, चाय के साथ चर्चा रेडियो ऑलिव के आरजे के साथ।
1: इंटरनेशनल टी डे स्पेशल टी टॉक्स एंड मेमोरीज ब्रॉट टू यू बाय सॉल्ट मैंगो ट्री। Salt Mango Tree Restaurant. Authentic taste, great ambience and budget friendly. Matar Kadeem. Call 5164-8000.
0: और यही बात बोलते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं। के और जयेश गांधी की आवाज में आहिस्ता आहिस्ता का गाना सुनते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: माँ मुझे छोटे एड ब्रेक्स दिखाई दे रहे हैं माँ।
1: ऑल एफ शॉर्ट ब्रेक।
0: आइला जादू।
2: अनलॉक योर चाइल्ड्स पोटेंशियल विद ब्रिलियंट कतार। 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvatra. For more details, call 500-56123.
3: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
4: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

अभी तो फिलहाल भाई यहाँ से जाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि स्टेशन क्लॉक में 9:48 हो रहे हैं और धीरे धीरे यहाँ से टाटा बाबाई करके निकलने का वक्त आ चुका है। थोड़ी देर में मुस्कान यहाँ आ जाएगी आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए, तो खुली बाहों से मुस्कान का स्वागत कीजिए। और उसके साथ साथ जाते जाते जाते यही बोलूंगा कि अपना ख्याल रखना, अपने खास लोगों का ख्याल रखना और हमें जरा दुआओं में याद रखना। तो चलिए टाटा बाबाई, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे एंड या कीप ऑन सेइंग जियो बिंदास।

0: 26 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.

गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लाइफ मस्त है। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल 106.3 FM। मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। सो आज जो है हम थोड़ा स्पेशल बात करने वाले हैं, क्योंकि कभी कभी ना लाइफ में मोटिवेशन नहीं चाहिए होता, बस एक कॉन्वर्सेशन चाहिए होती है। और आज का एक क्वेश्चन जो है वो बहुत ही सिंपल है मेरा आपसे, कि आप इमोशनली किस बैटरी परसेंटेज पर चल रहे हो, 100% मोटिवेटेड या फिर 2% विद पावर सेविंग मोड। सो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो सच में इस पावर सेविंग मोड पर ही हूँ। और एडल्ट लाइफ का सबसे फनी पार्ट पता है क्या आपको, हम फिजिकली काम से नहीं मेंटली नोटिफिकेशन से थक जाते हैं। हर दिन इतना कुछ, इतने सारे रिमाइंडर्स, इतनी सारी चीज़ें, और ब्रेन जो है वो लिटरली आपको मतलब एयरपोर्ट जैसा फील करवाता है। इसीलिए रेडियो का जो चार्म है वो अभी भी सर्वाइव कर रहा है, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं, थोड़ा सा वार्म्थ मिलता है। यू नो, ऑफिस ड्राइव, किचन, जिम या फिर एसी के सामने बैठकर बस अपने फेवरेट गाने सुनना, और उसमें आपको पता नहीं है कि अगला गाना कौन सा होने वाला है। सो आज ऐसे ही कुछ ब्यूटीफुल गानों के साथ, ऐसे ही कुछ ब्यूटीफुल बातों के साथ मुस्कान आ चुकी है। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: Radio Olive, your happiness frequency.
1: 6 months की पावर पैक रेंज हैवी ट्रक्स टिपर्स ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ। सत श्री अकाल जी, मैं हूं हरभजन मान और तुम सुन रहे हो कतर हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑल ऑफ 106.3 एफएम जियो बिंदास। ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: यार यूजुअली हम म्यूजियम्स को बहुत ही ऐसे बोरिंग स्कूल ट्रिप समझते थे. जब मैं मतलब छोटी थी तो मेरे साथ स्पेशली ऐसा होता था कि जब भी कोई ऐसा बात करता था तो मुझे लगता था नहीं ये तो ट्रिप बहुत बोरिंग होने वाला है. पर आज एक आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ. यस्टरडे वॉज इंटरनेशनल म्यूजियम डे और कतर म्यूजियम ने कल इंटरनेशनल म्यूजियम डे पर सेलिब्रेट किया. और द बेस्ट पार्ट वॉज ऑल म्यूजियम्स में कॉम्प्लीमेंट्री एंट्री थी. मतलब कोई भी टिकट आपको पे नहीं करना था. और इस साल का ग्लोबल थीम भी काफ़ी पावरफुल था कि म्यूजियम यूनाइटिंग डिवाइडेड वर्ल्ड. सो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअली आर्ट और कल्चर ऐसे ही दो चीज़ें हैं जिनके बारे में हमेशा हमें बात करनी चाहिए, जिसमें यू नो स्टोरीज होती हैं, हिस्ट्री होती है. म्यूजियम का रियल पर्पस सिर्फ यू नो ऑब्जेक्ट्स दिखाना नहीं होता, आइडेंटिटी प्रिजर्व करना होता है. और हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें यू नो कभी कभी हमें लगता है कि हमें ज़रूर देखनी चाहिए. सो नेक्स्ट टाइम कभी आपको मौका मिले म्यूजियम जाने का तो ज़रूर जाइएगा. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063. Life.

0: सो भाई आज की बुक जो है वो बहुत ही सिंपल है लेकिन दिल के अंदर सीधे उतर जाती है। किताब का नाम बताने से पहले आपको बताती हूँ, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है और किताब का नाम है बिफोर द कॉफी गेट्स कोल्ड।
1: बुक इन फोकस विद मुस्कान।
0: So, इस किताब के बारे में बात करूं उससे पहले बात करूंगी पंकित के बारे में। यस्टरडे आई हैड अ वेरी गुड कॉन्वर्सेशन ऑन आर यू नो व्हाट्सएप नंबर, जिसमें उन्होंने मुझे बताया कि कौन सी किताबें उन्हें पढ़ना पसंद है। कल मैं एक मुराकामी की किताब के बारे में बात कर रही थी एंड वी हैड अ वेरी गुड डिस्कशन कि उनको मुराकामी की किताबें कैसी लगती हैं। बट आप भी मुझे बता सकते हो ऑन आर व्हाट्सएप नंबर विच इज 3311063। सो आज की किताब है बिफोर द कॉफी गेट्स कोल्ड। सो जैपनीज बेस्ट सेलर है और कॉन्सेप्ट बहुत ही ब्यूटीफुल है। एक स्मॉल कैफे होता है जहां पर लोग ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कंडीशन के साथ कॉफी ठंडी होने से पहले वापस आना पड़ेगा। और मतलब ये साइंस फिक्शन बुक कम इमोशनल बुक ज्यादा लगती है। लोग पास्ट में जाते हैं किसी को सॉरी बोलने, किसी को थैंक यू बोलने, या बस एक यू नो कॉन्वर्सेशन के लिए। और बुक का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट क्या है, ये आपको याद दिलाती है कि लाइफ में ना बड़े बड़े रिग्रेट्स यूजुअली अनसेड वर्ड्स होते हैं और हम सबके पास कोई ना कोई कॉन्वर्सेशन होती है जो हम दोबारा करना चाहते हैं। बुक का राइटिंग स्टाइल भी चार्म और सूदिंग है, लाइक रेनी कैफे वाइब्स वाला। सो अगर आपको भी ऐसी साइंस फिक्शंस पढ़ना पसंद है जिसमें इमोशंस भी हैं, साइंस भी है, देन यू कैन गो विद दिस बुक जिसका नाम है बिफोर द कॉफी गेट्स कोल्ड। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर, आई विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह।
1: गुलराज सिंह
0: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3।
1: जियो बिंदास।
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

मैं ट्राई करती हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ऑब्जर्व करूँ. और इंटरेस्टिंग फैशन टेक जो है वो वायरल हो रहा है आजकल एयरपोर्ट पर. लोग चाहे वो शाहिद कपूर है, प्रियंका चोपड़ा है या बेला हैडिड है, आपने देखा उनको वायर्ड वाले एयरफोन्स के साथ. जैसे सेलेब्स वायर्ड वाले एयरफोन्स यूज़ करते दिख रहे हैं तो इंटरनेट बड़ा कन्फ्यूज हो गया है कि इतने अमीर लोग, मतलब इतने रिच लोग जिन्हें एक्चुअली कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो महंगे वाले वायरलेस नए प्रो यू नो जिसमें आपको बाहर का कोई साउंड भी नहीं आता, वो वाले फोन्स ना लगाकर दिस एयरफोन्स ये क्यों यूज़ कर रहे हैं. लेकिन रीज़न बहुत इंटरेस्टिंग है. फर्स्ट, ऑडियो क्वालिटी. ऑडियो फाइल्स बोलते हैं कि वायर्ड फोन्स का साउंड क्लियर होता है. सेकंड, नो चार्जिंग टेंशन, मतलब यार आपको चार्ज करना ही नहीं पड़ता. और तीसरा है, कई सारे लोग मतलब पसंद करते हैं वायर वाले चीज़ें. सो आई वॉज थिंकिंग कि मतलब क्या कंसर्न है. और फोर्थ रीज़न है फैशन. यस, ओल्ड टेक सडनली कूल एस्थेटिक बन जाता है और इन्हें लगता है कि भाई ये जो करते हैं वो तो फैशन हो ही जाता है, चाहे वो बेला हैडिड हो, चाहे वो शाहिद कपूर हो या प्रियंका चोपड़ा हो. सो मुझे अब अगली बार कुछ ऐसा एयरपोर्ट पर दिखेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी. लेकिन आपने ऐसी कौन सी चीज़ें देखी हैं जो आपको लगता है कि यार ये सेलिब्रिटीज़ कैसे अभी तक यूज़ कर रहे हैं, बताओ मुझे 3311063 पर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

सो आज फिर से वो रिकॉर्ड्स बनने वाले हैं क्योंकि आज आमने सामने बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स होने वाले हैं। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 एफएम। मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। भाई शाम को मैच होने वाला है राजस्थान वर्सेस लखनऊ के बीच में। या तो मिशेल आज 50 प्लस बनाएंगे या फिर वैभव सूर्यवंशी पता नहीं कितने छक्के लगाएंगे क्योंकि उनका रिकॉर्ड तो ऑलरेडी यू नो बन चुका है कि उन्होंने सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं इस पूरे टूर्नामेंट में। सो यस्टरडे हैदराबाद वर्सेज चेन्नई का मैच था जिसमें हैदराबाद ने मैच को जीता। 181 का टारगेट मिला था 5 विकेट के नुकसान पर। पूरे 19 ओवर में ये मैच खत्म किया उन्होंने। हैदराबाद की जीत से प्लेऑफ की टॉप 3 टीमें जो हैं वो अब डिसाइड हो गई हैं। बाय द वे विच इज योर फेवरेट टीम? और मतलब काफी सारे लोग मुझे कह रहे थे कि यार हमारी फेवरेट टीम जो है बैंगलोर वो तो पहुंच चुकी अपने यू नो सेमीफाइनल में। एंड सब लोग बहुत ही खुश हैं क्योंकि मैं जब भी पूछती हूँ कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है तो बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है कि बैंगलोर। विच इज योर फेवरेट टीम बताओ मुझे 3311063 पर। बात करूंगी थोड़ी देर में कि कल के मैच के बाद क्या साफ हुआ है, कौन कौन सी पिक्चर है जो आपको लगता है कि एकदम क्लियर हुई है कि कौन कौन जाने वाला है क्वालिफायर में। मैं थोड़ी देर में लौट कर आती हूँ, आप कहीं मत जाइए। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

0: सो वी वर टॉकिंग अबाउट मैचेस. तो कल के मैच में अब जो है काफी सारी पिक्चर क्लियर हो गई है. सो बेंगलुरु के बाद अब हैदराबाद और गुजरात ने भी लास्ट फोर जो मैचेस होने वाले हैं, लास्ट फोर जो टीम्स हैं उसमें अपनी जगह पक्की कर ली है. सो हैदराबाद ने चेन्नई को कल 2 points से हराया, मतलब 2 points हासिल किए कल का मैच जीत के, और टीम जो है अब 16 points के साथ प्ले ऑफ में अपनी जगह बना चुकी है. गुजरात को भी अब इसका फायदा मिला और उसके बाद प्ले ऑफ के चौथे नंबर के लिए अब पंजाब, राजस्थान, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली, इन सब के बीच में जो है वो कंपटीशन है कि कौन आएगा फोर्थ नंबर पर, क्योंकि तीन टीम तो फाइनल हो चुकी हैं. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. बाय द वे, आपको क्या लगता है कौन सी होगी वो आखिरी और चौथी टीम? क्या वो आपकी फेवरेट टीम इनमें से कोई है, पंजाब, राजस्थान, चेन्नई, कोलकाता या फिर दिल्ली, या फिर कोई आपको लगता है कि नहीं यार इनमें एक बेस्ट प्लेयर है जो मुझे लगता है कि उस टीम को पूरे टॉप फोर टीम्स में लेकर जाएगा. 3311063 इज माय नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर.

0: 26 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिक.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

यार मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि नहीं यार कुछ चीजें ना ब्रांड देख के नहीं खरीदनी चाहिए, अगर पसंद आ रही है तो ले लो। मतलब हो सकता है वो कोई आप लोकल स्टोर से खरीद रहे हो या फिर कोई ऐसी चीज है जो आपको मतलब बस अच्छी लग गई है, बट उसका ब्रांड से कोई लेना देना नहीं है। बट आज भी बहुत सारे लोगों में, मतलब मुझे लगता है कि 90% लोगों में ब्रांड को लेकर बहुत क्रेज है। अब स्पेशली वॉच की बात की जाए तो लाइन लगी हुई है भाई, मतलब स्टोर्स के बाहर क्राउड कंट्रोल नहीं हो रहा। और ये सिर्फ मैं किसी एक कंट्री की बात नहीं कर रही हूँ, इंडिया से लेकर थाईलैंड तक कई सारी जगहों पर स्वॉच और एक लग्जरी ब्रांड है उसने कोलैब किया है, विच इज एपी। अब इस कोलैबोरेशन की वजह से जो वॉचेस हैं वो ग्लोबली वायरल हो रही हैं और स्टोर के बाहर इतनी भीड़ है कि कुछ लोग मतलब कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले स्वॉच और ओमेगा का मून स्वॉच कोलैब भी बहुत इनसेन हिट हुआ था। क्वेश्चन ये है कि लोग इतना क्रेजी क्यों जाते हैं, मतलब लग्जरी प्लस अफोर्डेबिलिटी प्लस एक्सक्लूसिविटी ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि आपको एक बहुत बड़ा ब्रांड जो है वो बहुत कम में मिल जाता है। और बट मुझे ऐसा लगता है कि लग्जरी हो जाती है, अफोर्डेबिलिटी हो जाती है, पर एक्सक्लूसिविटी कहाँ बचती है, मतलब लाखों लोग उसे लेने के लिए खड़े हुए हैं। बाय द वे आप मुझे बताओ, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM, मुस्कान है आपके साथ। क्या आप भी ऐसे किसी ब्रांड के लिए इतनी क्रेजी हो जाते हो कि जब उस पर कोई सेल आती है या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है या फिर कुछ ऐसा होता है कि यार इसने कोई नया एडिशन निकाला है और वो बहुत सस्ता मिल रहा है, सो आप भी उसके लिए यू नो लिमिटेड एडिशन का जो वो स्ट्रांग कनेक्शन होता है साइकोलॉजिकली, वहां पर पहुंच जाते हो उस ब्रांड को लेने के लिए? या आपको लगता है नहीं यार मतलब वाई, क्यों ही आपने इतने पैसे बर्बाद करने हैं या फिर अपना टाइम इतना बर्बाद करना है कि जिसके लिए हमें लाइंस में लगना पड़े? क्या लगता है आपको? 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31 मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

सो देयर इज वन रिसर्च जो काफी वायरल हो रही है. स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि वर्किंग मदर्स के जो बच्चे होते हैं वो ज्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, इमोशनली स्ट्रांग होते हैं और रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं. और रीजन थोड़ा सा लॉजिकल है, जब बच्चे पेरेंट्स को मल्टीटास्किंग और हार्ड वर्क करते हुए देखते हैं तो नेचुरली रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख लेते हैं. लेकिन मुझे थोड़ा सा ना आपको एक मतलब रियलिटी चेक देना है. भाई माई मदर वॉज नॉट वर्किंग, वो पूरा घर संभालती थी, पर फिर भी भाई मुझे ऐसा लगता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं इमोशनली स्ट्रांग हूँ और मैं रिस्पॉन्सिबल भी हूँ. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है. अब भाई स्टडीज तो आती रहती हैं तो मैंने सोचा इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि हमारी मदर्स वर्किंग नहीं थी पर फिर भी परफेक्ट मॉम, परफेक्ट घर, परफेक्ट रूटीन, सब कुछ बहुत ही परफेक्ट होता था. और सोशल मीडिया ने ना ऐसे कंपैरिजन जो है वो इंक्रीज कर दिया है कि भाई जो वर्किंग मदर्स हैं या फिर जो घर में रहती हैं, कौन सी मदर्स जो हैं वो अपने बच्चों को ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनाती हैं. सो भाई अब मैं तो ऐसा कह नहीं सकती कि कौन सी मदर्स, बिकॉज एवरीबॉडी इज़ स्ट्रगलिंग इन देयर लाइफ. हर किसी के अपने टारगेट्स हैं, हर किसी का अपना काम है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मम्मी वर्किंग नहीं थी बट फिर भी उन्होंने मुझे हर वो चीज़ सिखाई जो एक्चुअली सीखने की थी, चाहे वो खुद से कुछ काम करने की बात हो या फिर इमोशनली स्ट्रांग बनाने की बात हो या कोई भी चीज़ हो. सो आपको क्या लगता है कि आज की रिसर्च सही है या फिर नहीं? आपने भी मेरे जैसे ही एक्सपीरियंस किया है. 3311106 is my number. You are listening Radio Olive. Stay tuned. Jio. Bindas.

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ. विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ.
2: ग्रो योर ब्रांड अक्रॉस कतर्स की ऑडियंसेस. कनेक्ट विद हिंदी लिसनर्स ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM. मलयालम ऑडियंसेस ऑन रेडियो सुनो 91.7 FM. एंड अरबिक लिसनर्स ऑन तत्कार 107.4 FM. ऑन एयर विजिबिलिटी सपोर्टेड बाय परफॉर्मेंस ड्रिवन डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स. सिंपल इफेक्टिव इंटीग्रेटेड. कॉल 3009-1063 और 3082-1063.
3: हेलो टू ऑल द लिसनर्स ऑफ

0: दिन पहले यू नो नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज आई थी विच वॉज बॉलीवुड वाइव्स, जिसमें बॉलीवुड वाइव्स की लाइफ स्टाइल को दिखाया गया था. वैसे ही एक और शो कल और आ रहा है भाई नेटफ्लिक्स पर ही. दिस इज देसी ब्लिंग. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. अब आप सोचोगे कि मतलब क्या कनेक्शन है दोनों शोज का. सो देसी ब्लिंग इज लाइक कि जो इंडियंस हैं और दूसरी कंट्रीज में रहते हैं और उन्होंने बहुत नाम कमाया है, उनकी लाइफ, उनकी यू नो लाइफ स्टाइल कैसी दिखती है. और मतलब इंटरनेट ऑलरेडी कंपेयर कर रहा है इसको कि कैसा होगा ये. मतलब सीरीज जो है वो अल्ट्रा रिच इंडियन एक्सपैट्स जो हैं उनकी ग्लैमरस लाइफ को लेके बनाई गई है. लग्जरी पार्टीज, डिजाइनर फैशन, सोशल ड्रामा, रिलेशनशिप्स, गॉसिप, सब कुछ आपको इसमें मिलने वाला है. एवरीथिंग एक्स्ट्रा, नॉट जस्ट नॉर्मल, यू नो. और इस कास्ट में करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश भी है, मतलब यू नो द कपल. और रियलिटी शो को जज करते हैं यू नो, लेकिन सीक्रेट मुझे ऐसा लगता है कि सीक्रेटली जो लोग इसे बिंज वॉच करते हैं ना, यू नो, जिन्हें बॉलीवुड वाइब्स जैसे सीजन पसंद आए तो उन्हें ये भी पसंद आएगा, क्योंकि लग्जरी लाइफस्टाइल कंटेंट जो है वो एस्पिरेशनल फील देता है. और सोशल मीडिया जनरेशन को ये जो लाइफ है ये सरप्राइजिंगली एंटरटेनिंग लगती है. सो कल, मतलब बस एक ही दिन का इंतजार है, कल आप नेटफ्लिक्स पे सीरीज को देख सकते हो. बाय द वे, मुझे ऐसी सीरीज पर्सनली कम पसंद आती है. मुझे ऐसा लगता है कि यार ये बहुत ज़्यादा ओवर ड्रामा है, एक्स्ट्रा ड्रामा है. सो मुझे थोड़ा सा अलग टाइप की पिक्चर पसंद आती है. जैसे थोड़े दिन पहले मैंने नुक्कड़ नाटक देखी थी, विच वॉज सच अ ब्यूटिफुल मूवी, और वो कांस तक पहुंच गई. उसके बारे में भी मैं बात करूंगी. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून, जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: बात है सर, क्या पर ये बात है.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

सो टुडे इज द बर्थडे ऑफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिसने बॉलीवुड में हीरो की डेफिनेशन ही चेंज कर दी. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. सो हिज जर्नी इज बेसिकली वेरी यू नो इंटरेस्टिंग एंड उनकी लाइफ में बहुत ऑनेस्टी दिखती है. बॉलीवुड की मोस्ट इंस्पायरिंग स्टोरीज में से एक है ये. स्मॉल टाउन का बैकग्राउंड, स्ट्रगलिंग ईयर्स, टाइनी साइड रोल्स और फिर स्लोली यू नो वन ऑफ इंडियाज फाइनेस्ट एक्टर्स में उनका नाम आ गया. सो उनके फेस ना ट्रेडिशनल बॉलीवुड हीरोज जैसा तो माना नहीं गया. हमेशा उनसे कहा गया कि यू आर नॉट बॉलीवुड हीरो टाइप, लेकिन टैलेंट इतना स्ट्रांग था कि इंडस्ट्री को डेफिनेशन चेंज करनी पड़ी. बहुत सारी मूवीज आई, द लंच बॉक्स, रमन राघव, मंटो, सैक्रेड गेम्स और बहुत बहुत कुछ आया और एवरी रोल वॉज डिफरेंट. और उनकी एक्टिंग का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट क्या था? रियलनेस. मतलब अगर आप रियल हो ना लाइफ में तो आप कोई भी जंग जीत सकते हो, ऐसा कहा जा सकता है. सो आई विल से कि लाइफ में अगर आपने बहुत स्ट्रगल किया है, लाइफ में अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरा जो टैलेंट है वो रियल है, मैंने चीज़ें बहुत अच्छे से की हैं, और वो जब भी एक्टिंग करते हो तो लगता नहीं है कि एक्टिंग कर रहे हैं, कैरेक्टर इतने ज़्यादा रियल फील देते हैं, तो मुझे लगा कि भाई इनके बारे में बात करना तो बर्थडे वाले दिन स्पेशली बनता है. नवाजुद्दीन सिद्दीकी का बर्थडे है आज और स्क्रीन प्रेजेंस से इतना ज़्यादा यू नो हैप्पी हो जाती है ऑडियंस उनकी. सो यस, आज मुझे लगता है कि उनकी फेवरेट मूवी आपकी भी कोई ना कोई होगी जो आपको लगता है कि यार ये मूवी देख के तो मजा ही आ गया था. तो 3311106 इज माय नंबर, फटाफट से व्हाट्सएप करके बताओ. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ऑलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद होम स्टार अस, वी कंप्लीट योर होम।

0: एवरी डे मेरी लास्ट जो बात होती है वो यही होता है कि ये है मेरा आज का लास्ट थॉट, और आज का लास्ट थॉट मैं लेकर आऊँ उससे पहले आपको बता दूँ, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और ये है लाइफ मस्ट है। सो आजकल हम ना हर चीज को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना चाहते हैं, चाहे वो सक्सेस हो, लाइफ स्टाइल हो, कॉन्टेंट हो, लेकिन सच बात यह है कि लाइफ के बेस्ट मोमेंट छोटी छोटी चीजों में ही होते हैं। जैसे कि अभी मैं थोड़ी देर पहले नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात कर रही थी, तो एक्चुअली उनसे ये सीखना चाहिए कि भाई लाइफ में रियलनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक अच्छी चाय हो सकता है कि एक ड्राइव हो सकता है, किसी का मैसेज, या फिर हो सकता है कि बस यू नो आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करना है, अपने किसी अच्छे दोस्त के साथ बैठ के चाय या कॉफी पीनी है। बस ये छोटी छोटी चीजें हैं जो लाइफ को यू नो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती हैं, रियल बना सकती हैं। बट हम क्या करते हैं, ये सोशल मीडिया का ड्रामा, हम बस इसमें फंस जाते हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक मूवी की बात कर रही थी जो कल रिलीज हो रही है, एक्चुअली सीरीज देसी ब्लिंग। सो ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रामाज ना हमें पसंद आने लगते हैं बिकॉज सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे होते हैं। सो आई विल से कि थोड़ा सा रियल बहुत जरूरी है। सो आई विल से कि कल मिलते हैं इस देसी ब्लिंक के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव सुपर हिट गानों के साथ। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर
2: फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश ये गाना फ्रेश है,
1: फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर
2: ये गाना।

0: Radio Onyx, your happiness frequency.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31 मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
0: ऑलिव म्यूजिक मैराथन. एक घंटा नॉन स्टॉप.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पांसिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
3: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम बिगर

0: Tanisha.
1: शफकत माने तली साहब की आवाज में मोरा सैया हुआ से बोलत नहीं आए है ब्यूटीफुल गाना ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनीषा की जी आपके साथ ऑलिव रिचार्ज लेकर अ वेरी गुड आफ्टरनून मेरी जान
2: क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम
1: आशिकी 2 से अरिजीत सिंह की आवाज में ये कमाल का गाना
3: प्यारे
1: नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज में ये खूबसूरत राहत साहब की आवाज में ये राहत भरा गाना और ये जो रील्स पे काफी ट्रेंड हो रहा है आजकल हाँ जी ऑल दीज अमेजिंग ट्रैक्स आर लाइंड अप फॉर यू इन दिस आवर और ढेर सारी सरप्राइजेस बीच में भी हैं लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आपकी कैसे हैं आप हाउ हैज द डे बीन सो फार ट्यूसडे मे 19th कैसा ट्रीट कर रहा है आपको सब बढ़िया है कि नहीं बताएं मुझे 3311063 पर ऑफिशियली हम मिड वीक में आ चुके हैं तो ऐसे खुशी का जो स्तर है वो बढ़ने लगा है क्योंकि वीकेंड की तरफ पहुंच रहे हैं यस तो फटाफट से आ जाओ कॉल भी कर सकते हो 4444106 पर और फिलहाल भेज रहे हो एक ब्रांड न्यू ट्रैक खासियत ऑन रेडियो ऑलिव टू यू बिंदास

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
3: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम बिगर

0: अच्छा
1: अरिजीत सिंह के आवाज में आशिकी टू से तुम ही हो लियोन रेडियो 106.3 एफएम तनिष्क आपके साथ ऑलिव रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर और अपने आप को आईने में देखकर तुम ही हो बोल देना हर रोज अपने लिए इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रेस्क्रिप्शन आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू और एडवाइज यू क्योंकि जितनी ज्यादा मोहब्बत आप अपने आप से करेंगे ना उतनी बेहतर ये दुनिया आपको लगने लग जाएगी यू नो व्हेन यू आर कंटेंट इन योर ओन कंपनी फिर नहीं फर्क पड़ता कौन क्या सोच रहा है कौन क्या बोल रहा है कौन आ रहा है नहीं आ रहा है जा रहा है आई मीन देर आर फ्यू पीपल हु विल ऑलवेज बी इम्पॉर्टेंट टू अस और वो होने चाहिए लेकिन सबसे ऊपर लिस्ट में अपना खुद का नाम आना चाहिए तो अगर आप ये नहीं कर रहे हैं अब तक तो प्लीज शुरू कर दीजिए और बदलाव देखिए जिंदगी में मैंने शुरू किया है मैं देख पा रही हूँ दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू जी हाँ सेंडिंग कूल सॉन्ग ऑफ द आवर फॉर यू नुसरत साहब की आवाज में पीआरए ओनली ऑन रेडियो ऑलिव जियो बिंदास
2: कूल सॉन्ग
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर
3: क्या बात है सर क्या बात ये बात है
2: कूल सॉन्ग

0: Radio Olive, your happiness frequency. सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: Doha International Book Fair 2026 is now live at DECC from 14th to 23rd May. This year features over 520 publishers from 37 countries, more than 1.8 million books, exciting new releases, cultural talks, workshops and fun activities for kids and families. You can also enjoy author meet and greets, interactive sessions and the brand new mobile library experience. From 9 a.m. till 10 p.m. and Fridays from 3 p.m. till 10 p.m. and the best part, entry is absolutely free. Don't miss one of Qatar's biggest celebrations of books, learning and culture. Only at Doha International Book Fair 2026.
3: Olive Recharge. Radio Olive 106.3 FM par. Jio Bindas.
4: Olive Recharge.
5: With Homes Are Us, we complete your home. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
6: Commercial Bank, we are saving more, turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream. Dream bigger.

अलका याग्निक और शान की आवाज में तेरे बिना फ्रॉम द मूवी खुशी। अगर इस गाने की वीडियो देखी है तो देख के समझ गए होंगे कि कोरियोग्राफर ने कहा है जिसे जो आता है कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई कोरियोग्राफी की हुई है ऐसा लग नहीं रहा है, देख के रैंडम कोई भी कुछ भी स्टेप्स कर रहा है, कहीं भी जाके खड़ा हो जा रहा है, कैसे भी मूव जा रहा है, क्रेजी भाई। और ये मूवी भी बहुत क्रेजी है, अगर आपने नहीं देखी है ना यू शुड वॉच इट, पर उसके बाद गुस्सा है तो मेरे पास मत आना। It's an experience in its own, huh? You're listening to Radio Olive 106.3 FM, Trisha आपके साथ, Olive Recharge चल रहा है यहाँ पर, और गर्मी जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और हवाएं भी चल रही है अभी बहुत क्रेजी वाली। मेट डिपार्टमेंट ने वैसे भी वार्निंग दे ही रखी है कि यू नो इट विल बी वेरी विंडी एंड डस्टी, सो अपना ख्याल रखिए, पानी वानी पीते रहिए। एंड दिस वेदर ना ये बीमार बहुत जल्दी कर रहा है, बहुत सारे लोग अंडर द वेदर हो चुके हैं हमारे ऑफिस में भी, इवन आई वॉज अ फ्यू डेज अगो, उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट अभी भी मेरे को कोल्ड है। सो प्लीज अपना ख्याल रखें और ऐसी चीजें ना करें जिससे आपको ये सर्दी हो जाए, गर्म सर्द विच माई मदर सेज। सो यू नो धूप से आके ठंडा पानी पीना नॉट ओके, धूप से आके सीधा एसी में बैठ जाना, खड़े हो जाना उसके आगे, नॉट एट ऑल ओके। थोड़ा सा वक्त दो खुद को, बॉडी को नॉर्मल होने दो, एंड देन यू नो हैव वाटर, नॉर्मल टेम्परेचर वाटर पियो, दैट इज गुड फॉर यू मेरी जान। ठीक है, अपना ख्याल रखा करो यार, आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, समझो बात को। और सुनते रहो रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडो ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31 मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.
2: ले लगा और हो जा रिचार्ज.
3: Olive Recharge, Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas.
2: Olive Recharge.
4: In association with
5: Homes Are Us, we complete your home.
6: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
7: Commercial Bank, we are saving more, turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream, dream bigger.

0: तनिषा
1: अजहर मूवी से इतनी सी बात है मुझे तुमसे प्यार है, इतनी सी बात तो कभी भी नहीं होती और इतना आसान तो होता ही नहीं है बोलना, है ना। यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ ऑलिवी जॉर्ज चल रहे हैं यहाँ पर। और समय रैना ने अभी जब अपना स्पेशल निकाला था उसमें उन्होंने एंड में बताया था दैट ही विल बी बैक विद इंडियाज गॉट लेटेंट टू। यस, एंड अभी कुछ पिक्चर्स जो है वो ऐसे रोटेट हो रही है सोशल मीडिया पे जिसमें आलिया भट्ट और शर्वरी, जी हाँ, दे आर सीन ऑन द पैनल फॉर इंडियाज गॉट लेटेंट टू। आई एम थिंकिंग कि भाई कहाँ वो शो यूट्यूब पे उसने कॉमेडियंस के साथ बनाया था, उसे इतना हाइप अप कर दिया, इतनी कॉन्ट्रोवर्सी हो गई, सो मेनी थिंग्स हैपेंड अबाउट द शो एंड नाउ द सेकेंड सीजन इज बैक विथ यू नो टॉप एक्ट्रेसेस फ्रॉम बॉलीवुड। आप लेवल देख रहे हो कहाँ पहुंच चुका है एकदम से ही, दिस इज एब्सोल्युटली क्रेजी। हैप्पी फॉर समय। एंड शर्वरी की बात करिए तो आइए उनकी अपकमिंग मूवी मैं वापस आऊंगा का गाना सुन लेते हैं नीलांजना की आवाज में। मस्कारा ओनली ऑन रेडियो ऑल एफएम जियो बिंदास।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
3: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी कमर्शियल बैंक्स 5 million rials ड्रीम बिगर

0: Tanisha.
1: फैंटम मूवी से अफगान जली भी ओनली ऑन रेडियो 106.3 FM. तनिषा आपके साथ ऑलरेडी चार चल रहा है यहाँ पर. एंड यार व्हेनेवर वी गो टू वर्क यू नो लाइक कॉर्पोरेट सेक्टर में तो काम करना तो ऑब्वियसली हम और चीज़ें एडिशनल स्किल्स पा लेते हैं वहाँ पे सीख जाते हैं वहाँ पे बट उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है जैसे कि कैसे फिजूल की जो मीटिंग्स हो रही होती है उसमें शांत काम बैठना है और किस तरह से यू हैव टू रीड द रूम वेदर दे आर ओपन टू टेक योर ओपिनियंस और योर सजेशंस और नॉट और वेदर दे आर टेकिंग इट पॉजिटिवली और नॉट. ये चीजें भी आप वहां पे समझ जाते हो सीख जाते हो. जो फालतू के फीडबैक्स मिल रहे होते हैं उनको पॉजिटिवली कैसे एक्सेप्ट करना है. एंड ये वाली प्रॉब्लम सबसे ज्यादा मैं फेस करती हूँ और मे बी आई वुड से कि ये चीज मैंने सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से सीखी है कि ईमेल्स पे जब आप रिप्लाई कर रहे हो तो अपने दिल की बात दिल में ही रख लेनी है वहां पे नहीं बतानी है टाइप करके इसे रिमूव कर देना और फिर पोलाइटली जो भी प्रोफेशनल लैंग्वेज होती है उसमें रिप्लाई करना. ये तो पॉलिश हो जाती है स्किल एकदम आपकी. और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपने सीखी है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आके ये जानना चाहूंगी मैं. 3311106 पर मैसेज कीजिए और बताइए मुझे और सुन रही रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है

बॉम्बे जयश्री की आवाज में रहना है तेरे दिल में मूवी से जरा जरा बहुत ही कमाल गाना ऑल योर रेडियो ऑल एफ 106.3 एफएम तनीषा आपके साथ ऑल एवरी चार्ट चल रहे हैं यहां पर है लेट्स टॉक अबाउट पैराडॉक्स ऑफ चॉइसेस सो आई डोंट नो इफ यू डू दैट और नॉट मतलब जितने लोगों से मैं मिली हूँ मोस्ट ऑफ देम डू दैट हमें कुछ ना कुछ देखना होता है वेन एवर वी आर यू नो हैविंग आर फूड राइट सो मैं क्या प्रॉब्लम फेस करती हूँ आई ओपन नेटफ्लिक्स और यूट्यूब एंड देन आई ट्राई टू फाइंड अ परफेक्ट थिंग विच आई विल वॉच विच आई वॉन्ट एक्चुअली वॉच यू नो अटेंशन के साथ बट मुझे वो पीछे से बैकग्राउंड नॉइज चाहिए एंड देन ओनली आई हैव माई फूड और आई हैव माई टी इफ आई एम अलोन ओके लेकिन इतनी सारी चॉइसेस होती हैं कि मुझे ढूंढते ढूंढते इतना वक्त लग जाता है कि मेरी चाय ठंडी हो जाती है मेरा खाना ठंडा हो जाता है और फिर उसके बाद रैंडमली आई जस्ट पिक एनीथिंग विच कम्स इन फ्रंट ऑफ मी और मे बी आई गो टू दैट वन शो विच आई कीप वॉचिंग फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स और वो देखने बैठ जाती हूँ मैं सो दैट्स वॉट हैपन्स विद ऑल ऑफ अस यू नो इफ यू हैव बीन गिवन अ लॉट ऑफ चॉइसेस इन फ्रंट ऑफ यू ना तो आपके लिए एक चीज सेलेक्ट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है एंड यू एंड अप प्रोक्रास्टिनेटिंग दैट कि चलो ठीक है यार बाद में क्योंकि बहुत ज्यादा लोड हो जाता है ब्रेन पे कि यार ये भी अच्छा लग रहा है वो भी अच्छा लग रहा है और हमेशा ये फीलिंग जरूर होती है कि अभी जो मेरे पास है इससे बेहतर डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होगा ही बाहर वॉट इफ मैं वो मिस आउट कर जाऊं बिकॉज मैं इसके ऊपर फोकस कर रही हूँ सो दैट इज पैराडॉक्स ऑफ चॉइस अगर हम उससे बाहर निकल जाएं तो सोचो लाइफ कितनी आसान होगी पर उससे बाहर निकलना आसान काम नहीं है ना वही तो प्रॉब्लम है वेल आप सोचो इसके बारे में मैं भेज रही हूँ एक बढ़िया सा गाना आपके लिए स्टे ट्यून्ड एंड ट्रू बिंदास

You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Dinisha ke saath hai aap Olive Recharge chal rahe hain yahan par. So yesterday we talked about Instagram ki wo kis tarah se shuruaat hui thi, kya purpose tha us app ka aur eventually wo kya ban gaya. Same story YouTube ke saath bhi hai. So YouTube jab launch hua tha, उनका पहला आइडिया था दैट वी विल मेक इट अ डेटिंग स्टाइल ऐप, यू नो, एंड जहाँ पर लोग अपनी वीडियोस अपलोड कर पाएंगे कि उन्हें कैसे पार्टनर्स चाहिए. बट इट एक्चुअली डिड नॉट वर्क आउट रियली वेल. एंड देन उन्होंने डेटिंग वाला पार्ट ड्रॉप करके सिर्फ वीडियोस वाला पार्ट पे फोकस किया बिकॉज पीपल वर मोर इंटरेस्टेड इन जस्ट वॉचिंग द वीडियोस इंस्टेड ऑफ यू नो देम गोइंग एंड अपलोडिंग इट. सो दे वर लाइक यार ये बेटर लग रहा है. सो वो वीडियो अपलोडिंग वाले पार्ट पर ही स्टिक कर गए एंड वी हैव यूट्यूब नाउ. और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ गई और हम क्रेजी तरीके से एडिक्ट भी हो चुके हैं शॉर्ट्स के. मैं तो हो ही चुकी हूँ. सो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है मेरी जन कि अगर अभी शुरुआत हुई है और लग रहा है किसी चीज़ की कि यू नो इट इज़ नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, Eventually, you keep going on and you will find the right direction. Give up nahi karna hota hai yaar. Haan ji. Sending a brand new track, Haan Tu Hai, in the voice of Vishal Mishra. Stay tuned. Andrea Bindas.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पांसिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
3: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम बिगर

0: नेहा कक्कर की आवाज में साथ में जस्सी गिल ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम. तनीषा आपकी ज्यादा ऑलिव रिजॉर्ट चल रहे हैं अब. सलेम जैम्स का आज का मेरा सवाल है कि अल्फाबेट्स में ऐसा कौन सा लेटर है जिसमें बहुत पानी है. जी, अल्फाबेट्स में ऐसा कौन सा लेटर है जिसमें बहुत पानी है. दिस इज व्हाट यू हैव टू टेल मी. 3311 1063 पर मैसेज कीजिए फटाफट से और बता दीजिए.
1: इंटरनेशनल टी डे स्पेशल टी टॉक्स एंड मेमोरीज
2: ब्रॉट टू यू बाय Salt Mango Tree Restaurant. Authentic taste, great ambience and budget friendly. Matar Kadeem. Call 5164-8000.
0: And G, message kijiye right away or sundre radio all up to Bindas.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win
3: the big biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry.
4: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
5: Hi, main hu Sarika. Radio. मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3।
4: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पांसिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
3: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम बिगर

0: Arijit Singh ke baas mein tere ishq mein movies a title track only on Radio Olive 106.3 FM Nisha aapke saath Olive Recharge chal raha hai yahan par aur maine pucha tha जी सो मैंने पूछा था लेम जैम्स का सवाल और सवाल ये था कि अल्फाबेट्स में ऐसा कौन सा लेटर है जो कि बहुत जिसमें बहुत सारा पानी है यार मैं दो सवाल मिक्स कर देती हूँ अभी फिर मेरा काम खराब हो जाता बट एक्साइटमेंट डज दिस टू मी यू नो एंड मैं पूछ चुकी हूँ ये अपने कॉलीग से भी आज और मुझे बड़े गंदे गंदे रिएक्शन मिले बट दे वर लाइक अरे दिस इज नाइस क्वेश्चन ना दे वर हैप्पी एंड आई कैन सी द हैप्पीनेस इन द आंसर्स आई हैव गॉट हियर यस पहले तो आसिफ जी का मैसेज पढ़ते हैं बहुत देर पहले आया था मैं मिस कर गई समहाउ सो आसिफ जी कह रहे हैं तनीषा जी आपकी वॉइस बहुत सुंदर है प्लीज प्ले वन सॉन्ग फॉर मी आपका गाना हम वैसे ही चला देते हैं अगर सच में तारीफ कर रहे हो तो फिर थैंक यू है और झूठी मोटी थी तो गलत बात है जी और यहाँ पे मुझे दिनेश जी का मैसेज आया है शबी का मैसेज आया है योगिनी एंड इरफान शकील एन का मैसेज काफी दिनों के बाद आया है यार How are you, darling? It's been quite long. Otherwise, हर रोज मुझे लेम जैम्स में एन का मैसेज जरूर आता था सो या सब ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है किसी ने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया है काफ़ी मुश्किल हो जाएगा यहाँ तो मुझे सिलेक्ट करना कि किसे लेकर जाना है चाय पे जी हाँ थर्सडे इंटरनेशनल टी डे पर देखते हैं बट या द करेक्ट आंसर इज सी बिकॉज सी पानी या I know, काफी lame है but you know, you signed up for this. I told you that it is going to be lame. But thank you so much, मेरी जान, for participating in my lameness. प्यार हो यार आप लोग.
1: International Tea Day Special, Tea Talks and Memories.
2: Brought to you by Salt Mango Tree Restaurant. Authentic taste, great ambience and budget friendly. Matar Kadeem. Call 5164-8000.
0: And gee, whoever gets selected for International Tea Day, Olive ke RJs ke saath chai peene ke liye, snacks khane ke liye at Salt Mango Tree Restaurant, we will let you know, we will give you a call. But filhal, meri taraf se cool song of the hour for you. Only for you, meri jaan. Haan ji, stay tuned and you win this.
2: Awesome. Radio Olive par, aane wala gaana, cool song of the hour.
3: Song of the hour.
4: Kya baat hai, sir? क्या पर ये बात है
3: awesome.

0: Radio Olive.
1: 106.3 Radio Olive.
0: Gio Bindas.
2: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
3: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31 मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
4: हमने लगा और हो जा रिचार्ज. ओलिव रिचार्ज.
5: ओलिव रिचार्ज. रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर. जियो बिंदास.
4: ओलिव रिचार्ज.
6: With Homestar Us, we complete your home.
7: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
8: Commercial Bank, we are saving more, turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream. Dream bigger.

नो एक्सक्यूजेस ब्रो, क्योंकि वीकेंड आने वाला है. यस, मिड वीक में आ गया और मेरी खुशी तो ऑलरेडी बढ़ गई है. यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम. थैंक यू शायद के साथ ओलिव रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर. और फिलहाल वक्त हो चुका है मेरे जाने का. मेरी जान, लौट कर आऊंगी कल दोपहर 2 बजे. तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और अगर अभी तक हमें फॉलो नहीं किया तो फटाफट से कर लो. radioolive.qs दी हैंडल. बहुत सारी नई नई चीजें हम वहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं. इंटरेक्ट कीजिए उन सबके साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. हमें पता चलना चाहिए कि आप तक चीजें पहुंच रही हैं यार. हाँ जी. ऑल्सो अगर कोई भी बात है जहन में तो बिना किसी झिझक हेजिटेशन के बिंदास आके हमसे शेयर कर सकते हैं. हम बैठे हैं यहाँ सुनने के लिए यार. 3311 1063 इज द नंबर. मैसेज कीजिए हमें जब चाहिए तब. जी, कॉल भी कर सकते हैं 4444 1063 पर. और सुनो, अपना ख्याल रखा करो क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट हो. जी हाँ, नेवर फॉरगेट दैट. ओके, सेंडिंग फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर फॉर यू ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम. जी बिंदास मेरी जान.

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिन

जी दिल की सुन ली, मैं तो अपनी अंतड़ियों की सुन रही हूँ आज, आवाजें वहां से आ रही हैं आज।

हाँ जी, आपकी वो होगी हो तो मैं बोलूं, बाकी है और ये सिर्फ मेरा ही हाल नहीं है, बहुत सारे लोगों का। इनफैक्ट हमारे ऑफिस में भी, इससे पहले तनिषा को भी थी, उससे पहले हमारे ऑफिस में, तो ये एक्चुअली सीजनल है ना, तो लोगों के साथ चल रहा है, तो अपना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी ये चार घंटे कैसे ध्यान रखना, पूरी अटेंशन मुझे दो, मैं आपका ध्यान रखूंगी यार। चार घंटे अपने होने वाले 5:06:32 स्टूडियो की घड़ी पे।

फीलिंग एकदम करेक्ट होनी चाहिए, और जो फील मेरी फीड पे आ रही है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आम मुझे दिखाई दे रहे हैं। आम की तिरा मेसू, आम का ये, आम का वो, आम का सीजन आ चुका है। और वाकई में थोड़े दिन पहले मेरी ये जो हालत पता क्यों हुई है, क्योंकि आम मैंने किसी को लाने के लिए बोला था, और मैंने समझा के बोला था, क्योंकि दो मुझे भी बिल्कुल नॉलेज नहीं है आम के बारे में इतनी भी, बट मैंने नाम पढ़ा था कि अल्फांसो और केसर बहुत ही मीठे होते हैं, और तो मैंने बोला तनीषा को कि यार ला दो। अब उसको भी, हमको नहीं है ना भाई ये चीज़ें खरीदने की अकल, मुझे लगा नहीं यार वो मेरे से ज़्यादा सियानी है, लेकिन वो बेचारी आम लेके आई है, और वो आम खट्टे थे, और मैंने उसके ऊपर नमक मिर्च मसाला लगा के खा लिया, और उसके बाद खाऊं खाऊं कर रही हूँ मैं, ठीक है। सो आप लोग भी अपना ध्यान रखो, एंड आपका आज का दिन कैसा रहा, 3311106 पर मुझे बता दो यार व्हाट्सएप करके।

0: लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Supported by Homes Are Us. We complete.

0: नाम आपको ऑलरेडी पता लगे, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगी क्योंकि अपना स्टाइल है यार। मैं क्या चीज सुनियो, कितना की हाल चाल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर है थोड़े नाल। और मैच के बारे में बता देती हूँ, लखनऊ और राजस्थान का मैच चल रहा है और राजस्थान ने पहले टॉस विन किया, कहते हैं कि फील्डिंग करने वाले हैं हम, तो लखनऊ अभी खेल रही है। 4.1 ओवर कंप्लीट होने के बाद स्कोर हो गया 58, माय गॉड, लाइक 4.1 पे 58 का स्कोर हो चुका है। विकेट जो है वो अभी तक एक भी नहीं गई है। तो कौन कौन राजस्थान को सपोर्ट कर रहा है, कौन कौन कर रहा है लखनऊ को, 3311063 पे बता दीजिए।
1: तुमसे मिलके दिल का है जो हाल, क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल, क्या कहे,
0: कमाल हो गया है, चौका भी लगे, 62 का स्कोर हो गया है अभी 4.2 ओवर कंप्लीट होने के बाद। पॉसिबल है, इम्पॉसिबल चीज नहीं है यार, बस थोड़ा सा है कि लाइफ में आजकल ज्यादातर लोग प्यार से दूर ही भाग रहे हैं।
2: T20 स्कोर अपडेट presented by
3: Brooks Cafe, sweetness that hits straight to the heart. Dadar ki most loved kulfi ab bilkul paas. Madar Kadim Vakra VFS Global ke site, Oak Banafi Metro ke just next. Instagram pe follow karo and drop by today.
4: Powered by Ahmed Al Maghribi perfumes. Buy 3 get 1 free. Aapne sahi suna, Ahmed Al Maghribi par chal raha hai buy 3 get 1 free offer on all products 15 May tak. This offer is available on all 19 branches.
2: Brought to you by Ibad Sports. Gear up, game on. All your sports needs at one place. Ibad Sports, brand of achievements. Contact 7733-9198.
3: Boundaries hit, flavors ignite. Ab har dish mein lagega desi swad ka tadka with Desi Dhaba. Taste ka real siksa. Desi Dhaba, Bin Mehmood, Tawar Mall and Mall of Qatar.
5: Ab suniye, Olive ka zabardast hit.

0: अंजी देखो तैयारी हमारी चल रही है इंटरनेशनल टी डे को सेलिब्रेट करने की सॉल्ट मैंगो ट्री रेस्टोरेंट में। जैसे कि आप लोगों को बोला था, हम दो दिन से बात कर रहे हैं, हमारे लकी लिसनर्स को हम सिलेक्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी। आप लोगों के बहुत सारे हमको मैसेजेस आए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। सो बहुत जल्दी हमारे लकी लिसनर्स को हम सिलेक्ट कर लेंगे और इंटरनेशनल टी डे को सेलिब्रेट करने के लिए सॉल्ट मैंगो ट्री रेस्टोरेंट में हम लोग आपसे मिलने वाले हैं, जहाँ पे चाय तो पियेंगे ही, खाएंगे पिएंगे, ऐश भी करेंगे, बातें भी करेंगे, मजे करेंगे यार, ठीक है। सो थैंक यू सो मच आप सबके मैसेजेस के लिए। 5:34:10 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं एंड आ रही हूँ बस थोड़ी देर में, ज्यादा मिस मत करिएगा।
1: इंटरनेशनल टी डे स्पेशल टी टॉक्स एंड मेमोरीज
2: ब्रॉट टू यू बाय सॉल्ट मैंगो ट्री रेस्टोरेंट। ऑथेंटिक टेस्ट, ग्रेट एम्बियंस एंड बजट फ्रेंडली। मतार कदीम, कॉल 5164800।
3: Boy.

0: Radio on it. Your happiness frequency. Commercial Bank presents CB 2026 Million Rials Dream.
1: Ab sirf savings nahi, sapne grow honge. Jeetiye pure 5 million rials cash prizes.
0: Jeetne ke 4 raaste. Pehla, apna account balance badhaiye. Har 10,000 rials growth par paiye ek coupon.
1: Dusra, agar salary 4,000 plus hai ya 50% save kiya hai, to aap eligible hai.
0: Teesra, naye customers ko pehli salary ya 10,000 funding par guaranteed coupon. Aur chautha, 9 mahine regular सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। गदर की नंबर वन आरजे
3: सिमरन के साथ।
4: Zabardast evening. Make you drive golden with.
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Supported by Homes Are Us. We complete your home.

0: बैंग बैंग टाइटल ट्रैक आप अभी सुन रहे हैं। आपकी इवनिंग को एकदम मौसम बना रहे हैं ये गाना और सिमरन कौर का शो यार। और मौसम कितना औसम है चलिए चेक करते हैं। हां जी मौसम अपडेट है कि अभी के लिए टेम्परेचर है 33 डिग्री और फील्स लाइक 32 डिग्री। आज का मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री है और मिनिमम जो है वो 32 जाने वाला है। यार दिल को अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मिनिमम कुछ दिन से 27-28 इतना ही चल रहा था लेकिन आज थोड़ा सा ज़्यादा है और विंड जो है वो 9 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है ना के बराबर एंड ह्यूमिडिटी जो है वो 23% है। सो ये है मौसम के हाल। भूख लग रही होगी अब तो। ये वो टाइम है जहाँ पे ना तो आप डिनर करते हैं
1: चुप चुप क्यों तुम
0: ना आप इतना ज्यादा हैवी खा सकते हो क्योंकि फिर भूख मर जाएगी।

You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31 मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.

0: कर बैठा है।
1: अब तो हो गई यार। करते रहिए, लेकिन मैच की अपडेट अगर आपको चाहिए तो रेडियो वाले को ऑन रखिए, वो काम मैं अपना आप करवा दूंगी आपके लिए, है ना। लखनऊ और राजस्थान का मैच चल रहा है और लखनऊ भी खेल रहा है, 12 ओवर कंप्लीट होने के बाद स्कोर हो गया 149 एंड पहला विकेट जा चुका है।

0: ये विकेट गिरने की तरफ से मैंने पार्टी नहीं की थी, ये गाना था दोस्त। चक्को जी गाना फिर एविया हुआ थोड़ी देर दे विच 6:06:15 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं। एंड आपने देखा है ना कि आजकल इंस्टाग्राम पे एक नई अपडेट आई है, इंस्टाग्राम इंस्टेंट्स, जिसमें ये एक ऐसे चीज है कि आपका अगर हाथ लगा तो आपकी स्टोरी जो है वो अपने आप पोस्ट हो जाएगी और सब लोग जो है वो स्टोरी आपकी देख लेंगे। और एक ये एक ऐसा फीचर है जहां पर आप फिल्टर भी नहीं लगा सकते हैं, मतलब बिना फिल्टर के फोटो जाएगी और बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है और उनकी फोटोज जो है वो जो खींच रहे हैं वो ऐसी रैंडम जा रही है। लेकिन इस फीचर को आपको पता है कि आप टर्न ऑफ भी कर सकते हैं। तो किस तरह से इस फीचर को आपको टर्न ऑफ करना है मैं आपको बताऊंगी। आपको क्या करना है, अपनी ना इंस्टाग्राम की सेटिंग्स में जाना है, ठीक है। सेटिंग्स में जाने के बाद रुक जाइए, मैं भी ओपन कर रही हूँ क्योंकि मैंने भी आज ही जो है ये ओपन मतलब इसका ऑफ किया था, लेकिन फिर भी सब लोग भेजी जा रहे हैं तो फिर मैं इसको जो है वो यूज कर रही हूँ। इसमें आपने सेटिंग्स में जाके फिर आपने कॉन्टेंट प्रेफरेंस में जाना है और उसके बाद हाइड इंस्टेंट इनबॉक्स इसको ऑन कर दीजिए, दैट्स इट, आपका हो गया। आपको अगर नहीं यूज करना आ रहा और आपको लग रहा है कि यार कुछ और ही ना पोस्ट हो जाए तो फिर आपको ऑफ कर सकते हैं इसको।
1: T20 Score update. Presented by
2: Brooks Cafe. Sweetness that hits straight to the heart. Dadar ki most love kulfi ab bilkul paas. Madar Kadim Bakra VFS Global ke site Oak Banafi Metro ke just next. Instagram pe follow karo and drop by today.
1: Powered by Ahmed Al Maghribi Perfumes. Buy 3 get 1 free. Aapne sahi suna. Ahmed Al Maghribi par chal raha hai Buy 3 get 1 free offer on all products 15 May tak. This offer is available on all 19 branches.
3: Brought to you by Ibad Sports. Gear up, game on. All your sports needs at one place. Ibad Sports, brand of achievements. Contact 7733-9198.
2: Boundaries hit, flavors ignite. Ab har dish mein lagega desi swad ka tadka with Desi Dhaba. Taste ka real sixer. Desi Dhaba, Bin Mehmood, Tower Mall and Mall of Qatar.

0: Das.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो Ooredoo ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद Ooredoo.
2: Shackman की पावर पैक रेंज, हेवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स. दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ. विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ.
3: हाई रेडियो ऑलिव 106.3 लिसनर्स. This is Ranveer Singh.
4: Ranveer Singh.
3: Radio.
4: Stay tuned.
5: Olive Sono Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.
6: Radio Olive. I'm a number one.
7: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
8: सिमरन के साथ
9: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद.
10: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
11: Supported by Homes Are Us, we complete your home.

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. I'm a number one. Radio Olive,
1: I'm a number one. The big. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
2: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
3: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
4: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
3: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
4: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
3: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
6: सिमरन के साथ।
0: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Supported by Homes R Us. We complete your home.

रहेगा जी सोने कितना की हाल चाल सत श्रीकाल सिमरन कौर आपके साथ। अच्छा मैं आप लोगों को ना एक टास्क दे रही हूँ, मैं आपको एक गाने का हल्का सा म्यूजिक सुनाती हूँ और बताओ ये कौन सा गाना है। बस बस बस इससे ज्यादा नहीं सुना सकती, फिर आपको बिल्कुल ही पता लग जाएगा। क्या आपको पता लग रहा है कौन से गाने की धुन है? एक बार वापस से सुना रही हूँ, बस बताओ 3311063 पर देखते हैं कितने लोग पहचानते हैं।

0: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ
1: ये बात है।
2: थोड़े दिन से ये न्यूज जो है वो मेरी फीड पे घूम रही है। 2016 की बात है, दोनों ब्रदर जो थे वो ट्रिप से वापस आ रहे थे और दोनों ने ही लॉटरी की टिकट खरीदी और दोनों भाइयों ने ही लॉटरी की टिकट जो थी वो जीत ली। एग्जैक्टली सो इसका एक जो भाई था वो 291.4 मिलियन जो थे डॉलर जीते एंड उसका दूसरा भाई था उसने 7 डॉलर जीते सिर्फ। एग्जैक्टली एक ही टाइम पे दोनों ने लॉटरी की टिकट खरीदी और दोनों की लॉटरी लग गई। किसी की कम लगी वो अलग बात है दूसरे भाई की, लेकिन पहले वाले को टैक्स वैक्स काट के ऑलमोस्ट 40 मिलियन जो था वो मिला। कमाल है यार, लोगों की लॉटरियां लगती है, मेरे को फ्री का चूरन भी नहीं निकलता है कभी। 6:31 स्टूडियो की

0: सब गोलमाल है।
1: हाय एवरीवन, मैं हूँ अरमान मलिक।
2: अरमान मलिक
1: 106.3 FM रेडियो ऑलिव जियो बिंदास।
3: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: ब्यूटीफुल यार। जी मैं जी सड़ियों के दादी की हाल चाल सत श्री अकाल सिमरन कौर आपके साथ। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, कहते हैं कि इंटरनेशनल टी डे के लिए जो है वो किस तरह से खुद को हम रजिस्टर करवा सकते हैं। सॉल्ट मैंगो ट्री रेस्टोरेंट में इस बार हम अपना इंटरनेशनल टी डे सेलिब्रेट करने वाले, हमारे कुछ लकी लिसनर्स के साथ खाना पीना स्नैक्स एंड ऑल, चाय तो ऑफकोर्स होगी क्योंकि चाय का दिन है। सो हम दो तीन दिन से बहुत सारे मैसेजेस रजिस्ट्रेशन जो है वो मंगवा रहे थे। सो अभी फिलहाल के लिए आप जो है वो अपना लक जो है वो आजमा सकते हैं। आप मैसेज कर सकते हैं, टी लिख के अपना नाम लिख के भेज दीजिए 3311063 पर, और बहुत जल्दी हम डिसाइड करके कि कौन लकी लिसनर्स जो है हमारे साथ आने वाले सॉल्ट मैंगो ट्री रेस्टोरेंट में इस इंटरनेशनल टी डे पर। सिमरन कौर आपके साथ, मैं क्या जी आज फिर जी अविंदाज जी आ रही है थोड़ी देर में।
1: इंटरनेशनल टी डे स्पेशल टी टॉक्स एंड मेमोरीज
2: ब्रॉट टू यू बाय सॉल्ट मैंगो ट्री रेस्टोरेंट, ऑथेंटिक टेस्ट, ग्रेट एम्बियंस एंड बजट फ्रेंडली। मत आर कदीम, कॉल 5164

0: Pragma's Wholesale Market at Salvaru. Ample parking, convenient location.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.

सुन रहे हो कि हालचाल सत श्री अकाल सिमरन कौर आपके साथ। यार जब भी शॉपिंग करने जाते हैं ना हम लोग, तो बहुत बार कुछ चीजें जो है वो आपको इतनी ज्यादा पसंद आती है, या फिर आप एक दो तीन चीजें खरीदते हो, या फिर जो है वो आप हड़बड़ी में चीजें जो है वो खरीदते हो, तो आपको पता नहीं लगता कि कौन सी चीज जो है वो कितने की खरीदेगी। रिसेंटली सपना चौधरी जो हरियाणवी सिंगर है, सो उनका मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें उन्होंने इंटरव्यू में ये बोला कि वो गई थी दुबई गई थी, और वहां पर आपको पता है कि दुबई से लोग जो है वो कपड़े वगैरह खरीदते हैं, शॉपिंग करते हैं, परफ्यूम्स एंड सारी चीजें खरीदते हैं। तो उन्होंने क्या कहते हैं एक ट्रेंच कोट खरीदा, कहते हैं कि ट्रेंच कोट खरीद लिया, और बाद में पता लगा उस ट्रेंच कोट की जो कीमत थी वो अपना 7 लाख रुपए थी। कहते हैं कि उस चीज को देख के मुझे अभी तक जो है वो बहुत ज्यादा ये होता है कि अरे यार मैंने 7 लाख खर्च कर दिए। सो ऐसा मेरे साथ भी एक बार हुआ था। सो मैं दुबई एयरपोर्ट पे थी, तो मैं परफ्यूम खरीद रही थी और मैंने देखा, सो मेरे को लगा कि यार ये जो है वो कुछ 400 दिरहम का है, दिरहम का, लेकिन वो डॉलर का था और मैं दे के आ गई हूँ। बाद में मुझे, क्योंकि मेरा मैथ्स तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा वीक है, मैं नहीं इन चीजों की तरफ ध्यान देती हूँ, और जब आप एयरपोर्ट पे होते हो तो आप हड़बड़ी में होते हो, सामान जो है वो खरीदते हो। तो मैंने वो परफ्यूम लिया और बाद में पता लगा वो $400 का परफ्यूम था, 400 दिरहम का परफ्यूम नहीं था। मैन आई एम लाइक सिमरन कौर, तूने कर दिया जो तू हमेशा करती है। यार क्या आपके साथ भी ऐसा ही हुआ कि कभी आपने सामान खरीदा और आपने रियलाइज नहीं किया कि यार वो कितना महंगा, और बाद में आपको पता लगा अरे ये तो महंगा हो गया यार। 3311106 पे बताइए।

0: Radio Olive, your happiness frequency. 2026 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: हेलो लिसनर, मेरा नाम है राजपाल यादव और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM. जियो बिंदास.
3: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क. रेडियो ऑलिव
4: नंबर वन. इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
5: साथ जबरदस्त इवनिंग. मेक यू ड्राइव गोल्डन विद Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Supported by Homes R Us, we complete your home.

रणवीर कपूर। रणबीर कपूर की जैसी कोई फिल्म या का गाना मैं सुनती हूँ, उनकी बेस्ट जो जितनी भी फिल्मों में उन्होंने काम की, एक्टिंग की, परफॉर्मेंस दी, वो याद आ जाती है, जिसमें से ए दिल है, मुश्किल है, बर्फी है, रॉकस्टार है, तमाशा है। यार ऐसी कमाल कमाल की उन्होंने फिल्में की हैं कि मजा आ जाता है यार देखिए। 7:20 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।

0: चद्दर, इसमें ऐसी बोलती है ना यार। ओके, अभी फिलहाल के लिए आप क्यों हमारे बीच में है, ये क्रिकेट के स्कोर्स, जो कि ये मैच चल रहा है लखनऊ और राजस्थान के बीच में। लखनऊ ने पहले खेलते हुए 221 रन का टारगेट दिया है, राजस्थान अभी खेल रही है और राजस्थान का 1.4 ओवर कंप्लीट होने के बाद स्कोर हो गया है 24 बिना किसी विकेट के नुकसान पे, 110 बॉलों पे 197 रन्स जो है वो बनाने हैं। तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, लखनऊ या राजस्थान? 3311063 में बताओ ना यार।
1: T20 स्कोर अपडेट presented by Brooks Cafe. Sweetness that hits straight to the heart. Dadar ki most loved kulfi ab bilkul paas. Madar Kadeem Vakra VFS Global ke site, Oak Banafi Metro ke just next. Instagram pe follow karo and drop by today. Brought to you by Ibad Sports. Gear up, game on. All your sports needs at one place. Ibad Sports, brand of achievements. Contact 7733-9198. Boundaries hit, flavors ignite. Ab har dish mein lagega desi swad ka tadka with Desi Dhaba. Taste ka real sixer. Desi Dhaba, Bin Mehmood, Tawar Mall and Mall of Qatar.
2: Ab suniye, Olive ka Zabardast hit. Zabardast hit.

ਹਾਂਜੀ ਮੇਘਾ ਜੀ ਸੁਣਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਈਵਨਿੰਗਸ ਮੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਆਲ ਆਫ ਯੂ, ਆਪ ਸਭ ਕੇ ਮੈਸੇਜਸ ਕੇ ਲੀਏ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੈਂ। खेलने वाली, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम रेडियो पे लूं तो आप अपना नाम बस लिख के जो है वो टाइप करके रखिएगा, जैसे मैं आपको बोलूंगी आप मुझे लिख के भेज दीजिएगा। और मैच चल रहा है लखनऊ राजस्थान का, 221 रन का टारगेट लखनऊ ने दिया है राजस्थान के लिए। 8.1 ओवर कंप्लीट होने के बाद स्कोर हो गया है 90, पहला विकेट जो है वो जा चुका है।

0: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो Ooredoo ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद Ooredoo.
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: सलाम प्रणाम नमस्कार वणकम मैं हूँ जैकी श्रॉफ.
3: जैकी श्रॉफ
2: रेडियो 106.3 जे ओविंदास.
4: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.
5: रेडियो ओलिव नंबर वन.
6: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
7: आरजे सिमरन के साथ
8: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद.
9: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
10: Supported by Homes Are Us, we complete your home.

0: अब आपकी धूमधाम है, नाम ले लिया आपके। फटाफट से मैं आपको रूल्स बता देती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम मैं अभी के अभी रेडियो पे ले लूँ तो आपको अभी के अभी अपना नाम लिख के मुझे व्हाट्सएप करना पड़ेगा। मैं आपको मेरा व्हाट्सएप का नंबर दे रही हूँ जो है 3311063, 3311063। इस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ आप अपना नाम लिख के भेजिए, नो हाय नो हेलो नो वॉइस नोट्स। अगला गाना शुरू होने से पहले इरफान, शकील, कश्मीर एंड यूसुफ, डेजी, रवि, सुनीता, अदील, नबीन, शशांक, इलेन, प्रताप, शहजाद, शम्स, राज, सादिक, मोहम्मद आजम, हाजरा, खेमराज, शाबाज, हार्दिक, रफीक, डिंपल, जावेद, गुज्जर, अदील, मोहम्मद, सूरज, यासीन। फटाफट से अगला गाना शुरू होने वाला है 3311063 पे। आपका नाम मीनू, स्टिकर मत भेजो दोस्त, केपी, शाकिब जी, अली जी, थैंक यू सो मच, हाशिम जी, थैंक यू सो मच, मंजूर जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, पद्मिनी जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, रकुल जी, थैंक यू सो मच, बलराज जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, इरफान जी बहुत बहुत शुक्रिया, सईद जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, एंड दैट्स इट फॉर नाउ। जिन जिन लोगों के नाम ले लिए मैंने, आप थैंक यू लिखो और साथ में अपना फेवरेट वाला इमोजी जरूर बना देना।
1: Radio Olive पर आने वाला गाना Cool Song of the Hour।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है Cool Song।

0: जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। गदर की नंबर वन आरजे
1: सिमरन के साथ
2: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद। Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Supported by Homes R Us, we complete your home.

कितनी क्यूट बात है यार ये, जो नहीं कहा है कभी तो समझ भी जाओ। लखनऊ और राजस्थान का मैच चल रहा है, लखनऊ ने पहले खेलते 221 रन का टारगेट दिया है और राजस्थान अभी खेल रही है, 15 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं, स्कोर हो गया है 188, दो विकेट जा चुके हैं, सो ऑलमोस्ट एकदम सेम मामला चल रहा है। 30 बॉलों पे 33 रन जो है वो बनाने हैं, वो अभी 5 मिनट के अंदर भी बन सकते हैं, मतलब 5-10 मिनट में भी बन सकते हैं। मैं नहीं बोलूंगी, ऐसा कुछ तो नहीं बोलूंगी कि ऐसा कुछ होगा, चलो ठीक है यार, दोनों टीमें हैं, बढ़िया करें, राजस्थान जीते या लखनऊ जीते, खुशी तो आपको ही होगी।

एक फिल्म कोई 2025 में आई थी बंदर करके, इसकी बॉबी देओल की. ओके, सो 2025 में लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो रिलीज है वो एक्चुअली टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ था, लेकिन अभी ये जो फिल्म है वो रिलीज होने वाली है 5 जून को. बट इसका अभी अब तक मैंने कुछ ट्रेलर वगैरह कुछ नहीं देखा, बट आज मैंने इसका एक गाना सुना, भाई साहब फील आ गई यार. पूरा गाना सुनेंगे ना तो फील है यार इस गाने में. बाकी की फीलें कर लेना, कल शाम को 5 बजे फिर से जबरदस्त इवनिंग्स में आपसे मिलती हूँ. मिडनाइट लाउंज को एंजॉय करिए, खाने में दे रहो, ऐश कर दे रहो, चेहरे पे बड़े वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना, बी नाइस टू एवरीवन यार. गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू सर्किलो.

अच्छा, आपने कभी किसी का कॉन्टेक्ट राजू भाई बिजली वाला या फिर दीपक भाई कारपेंटर ऐसे करके किसी का नाम सेव किया है? मतलब कितना ऑब्वियस चीज है नहीं कि हम किसी का नाम सेव करते हैं और उसके आगे उस इंसान का काम जरूर सेव करते हैं, क्योंकि शायद वो बहुत मैटर करता है कि वो काम क्या करता है, वही तो डिसाइड करता है कि वो इंसान आपके लिए क्या मैटर करता है। हे, दिस इज मी आरजे आकाश, आपके दिल की आवाज 106.3 रेडियो ऑलिव पर मिडनाइट लाउंज के सफर में मैं आ गया हूं। और जनाब, कैसे हैं आप? कहां से सुन रहे हैं मुझे सबसे पहले बताइए, क्योंकि अभी आपके नाम की जब नोटिफिकेशन आएगी तो मेरे दिल पे एक छाप छोड़ जाएगी। तो रेडियो ऑलिव का पेज मिल जाएगा, फॉलो करके रिश्तेदारी गहरी कर लीजिए इंस्टाग्राम पे, हाई आरजे आकाश। और उसके बाद बताइए जनाब, कौन से गाने की फरमाइश है आपकी, बताइएगा जरूर। क्या पता मेरी आने वाली लाइब्रेरी में वो गाना ऐड ऑन हो सके, वरना वैसे तो मैंने बहुत प्यारे प्यारे गाने निकाले हैं। और हाँ, बात चल रही थी वो नाम जो आप सेव करते हैं उसके काम के साथ। ये जानना बहुत जरूरी है कि वो इंसान आपके लिए कितना मैटर करता है, क्योंकि जब आप उस इंसान का नाम नहीं याद कर पाते ना, तो वो चीज डालकर देखते हैं वुड वाला या फिर पानी वाला, इलेक्ट्रिशियन, तो वो नाम अपने आप साथ साथ आ जाता है। कई बार काम याद रह जाता है पर नाम नहीं, है ना? तो अपना नाम जरूर चेक करना उन लोगों के लिस्ट में जिनको सोचते हो कि आप, वो आपकी बहुत फिक्र करते हैं, वो सच में आपकी फिक्र करते हैं या आपके काम की? फिलहाल, अभी तो फिलहाल मैं फिक्र करता हूं आपकी, इसलिए आपके लिए मैं बहुत प्यारे प्यारे गाने निकाल के लाया हूं, क्योंकि मेरा काम और मेरे लिए आप दोनों बहुत अजीज हैं। एक ही तो बात है, आपको खुश रखना और प्यारे से गानों को प्ले करके दिल से कहना चियो बिंदास।

0: एक टाइम था जब गाड़ी में आगे मैं बैठूंगा इस पर बड़ी लड़ाई हुआ करती थी, और एक टाइम था जना वो भी था एक टाइम जब गाड़ी होगी घर में वही बहुत बड़ा सपना था, फिर पीछे डिग्गियों में भी बैठे हैं जनाब कई लोग तो नहीं। हे दिस इज मी आरजे आकाश, आपके दिल की आवाज 106.3 रेडियो ऑलिव पर मिड नाइट लाउंज के सफर में फिलहाल बारी है
1: रील वाली रियल कहानी।
0: तो रील तो जनाब मैंने आज वो देखी जो मेरे दिल को छू गई और आपके दिल को भी छू जाएगी, जहाँ पे आगे बैठने की लड़ाई हो रही थी लेकिन वहीं पे कुछ पुराने नॉस्टैल्जिया दिनों को दिखाया गया, जहाँ पर एक छोटी सी फोर सीटर कार में जब फैमिली बड़ी होती थी तो बच्चों को डिग्गी में पहुंचा दिया जाता था, तब इतना ज्यादा गर्मी और इतना ज्यादा सफोकेशन का डर ही नहीं हुआ करता था, बस पता था क्योंकि उनकी एंट्री पीछे वाइल्ड कार्ड

उस दिन डिग्गी से घुस के। वैसे मेरा सवाल इसी चीज से रिलेटेड था कि क्या आप अपने बचपन में कभी छोटी गाड़ी में डिग्गी में बैठकर आए हैं। अब ये मत लिखना कि अभी भी जनाब यही हाल है, अब तो यार बढ़ जाओ आगे। लेकिन फिलहाल आप मुझे बताओ क्या आपने कभी डिग्गी में बैठने वाला सफर एंजॉय किया है? किया है तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। इंस्टाग्राम पे रेडियो ऑलिव का पेज है, फॉलो करके इनबॉक्स में हाय आरजे आकाश और अपनी बात दिल से शेयर करो जनाब। क्योंकि पुराने किस्से तो सिखाते हैं जनाब कि अब जो आप लग्जरी चीजों का मजा ले रहे हैं, आपने एक टाइम पे बहुत एफर्ट्स करे हैं यार। ये जेंजी जनरेशन क्या ही समझेगी, नहीं इनको तो बस आगे वाली सीट चाहिए यू नो रील बनाने के लिए। अभी फिलहाल रील बनाइए इस प्यारे से गाने के साथ, क्योंकि बाहर का ये मौसम, बाहर की ये शाम और प्यारा सा ये गाना, उफ़ आ रहा वापस, कहीं जाएगा नहीं। सुनते रहिए रेडियो ऑल ओवर, दिल से कहते रहिए जियो बिंदास।

अच्छा सबसे खराब स्टेशन कौन सा है? अगर मैं आपसे पूछूं रेलवे स्टेशन या पुलिस स्टेशन, आपकी आज तक के एक्सपीरियंस से कौन सा स्टेशन सबसे खराब होता है? अगर इसके आउट ऑफ द बॉक्स आपको सोच सकते हो तो सोच के मुझे आंसर करो। आज के फिल्मी फ्लैशबैक की जगह मैं आपसे ये पूछने वाला हूँ। हाई, दिस इज मी आरजे आकाश, आपके दिल की आवाज 106.3 रेडियो ऑलिव से मिडनाइट लाउंज के सफर में। और आज ना फिल्मी अंदाज में मैं आपसे पूछता हूँ, रुकिए जरा, ऐसे कैसे यार, जब तक म्यूजिक और वो क्लास के साथ एंट्री है ना तो मजा गया है।

अब हम आपसे आज सवाल पूछते हैं, तो बताइए ऐसा कौन सा स्टेशन है जो आपके अब तक के एक्सपीरियंस में सबसे खराब स्टेशन रहा है? क्या वो पुलिस स्टेशन है या फिर वो रेलवे स्टेशन है? कौन सा, मैं कह रहा हूँ कौन सा स्टेशन है रे? कुछ ज्यादा फिल्मी हो गया क्या? आप बताइए मुझे कौन सा स्टेशन है, आउट ऑफ द बॉक्स भी जा सकते हो, आप बताओ कौन सा वो स्टेशन है जो आपके अब तक के टिल एक्सपीरियंस में सबसे बुरा स्टेशन है? सोचो जरा, लाइफ में इतने एक्सपीरियंसेस लिए, कुछ तो समझ आया होगा। अभी आंसर के साथ आते हैं, और मुझे पक्का श्योरिटी है कि कोई ना कोई लिसनर अपनी दिमाग की क्रिएटिविटी लेवल को आगे बढ़ाएगा और अपने लाइफ के रियल एक्सपीरियंसेस के साथ इस आंसर को लेकर आएगा। आरो फिलहाल मैं एक प्यारे से गाने के साथ, कहीं जाएगा नहीं, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव और दिल से कहते रहिए जियो बिंदास।

बोला था ना मैंने, बहुत तेजस्वी लिसनर्स हैं मेरे, बहुत खुराफाती लिसनर्स हैं। Hey, this is me, आरजी आकाश, आपकी दिल की आवाज 106.3 रेडियो ऑलिव पर मिडनाइट लाउंज के सफर में फिलहाल आंसर आ गया है। मैंने पूछा था कौन सा वो स्टेशन है जो सबसे वर्स्ट स्टेशन रहा है आपकी लाइफ में, क्या वो कोई पुलिस स्टेशन है, क्या वो कोई रेलवे स्टेशन है, पर जवाब कुछ हटके आया जिसकी मुझे उम्मीद थी। जी स्वाति जी, क्या जवाब दिया है, मोस्ट वर्स्ट स्टेशन इज एक्सपेक्टेशन। सबसे गंदी चीज होती है ना, सो नो एक्सपेक्टेशन नो डिसअपॉइंटमेंट्स। एक्सपेक्ट करना ही है तो मुझसे करो, क्योंकि यहां पर आप बोल सकते हो, बता सकते हो यार आप भी। जी अभी अभी फिलहाल स्वाति ने अपना फेवरेट गाने बताया तो मैं वो भी चलाने वाला हूं, लेकिन आप भी बता सकते हैं कैसे। यार बहुत इजी है, जब आपकी नाम की नोटिफिकेशन मेरे फोन पर आएगी वो सेव हो जाएगी और उसके बाद मेरी लाइब्रेरी में वो खोज चालू हो जाएगी। जी हाँ, इंस्टाग्राम पे रेडियो ऑलिव का पेज मिल जाएगा, फॉलो करके इनबॉक्स में हाय आरजे आकाश, और उसके बाद बस अपना मन पसंदीदा गाना बताइए या फिर कोई किस्सा दिल में है जो रखे रखे रखे रखे पुराना हो रहा है, उसको वापस से तरोताजा करते हैं, बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। अभी तो फिलहाल इस गाने को गुनगुनाना चालू करते हैं और दिल से कहते हैं जियो बिंदास।

0: अच्छा, कभी आपने अपना सेकंड वर्जन देखा है या फिर कभी पुराने वर्जन में जाने की कोशिश की हो? पक्का हुआ है ना आपके साथ भी ऐसा ही? आप भी कभी वो हुआ करते थे, है ना? यहाँ सुंदर की बात नहीं हो रही जनाब, यहाँ बात हो रही है जब आप शायद हर किसी के लिए अवेलेबल रहा किया करते थे, या फिर शायद बहुत ज्यादा इमोशनल हुआ करते थे, या फिर बेधड़क जो मन में बोल दिया करते थे। लेकिन अब टोटली डिफरेंट। आज के डिजिटल डायरी में कुछ यही लिखा है।
1: डिजिटल डायरी।
0: Hey guys, this is me, RJ Akash, आपके दिल की आवाज 106.3 रेडियो ऑलिव पर मिडनाइट लाउंज के सफर में। और डिजिटल डायरी के पन्ने पे आज लिखा है, वक्त इंसान को वो बना देता है जब वो खुद भी बनना नहीं चाहता था। कठोर, मजबूत, निर्दयी, बहुत ज्यादा रूड सा बिहेव करने वाले लोग अक्सर कभी पहले शायद बहुत सॉफ्ट नेचर के हुआ करते थे। हर घर में माँ की कहानी एक होती है जहाँ पे उन्होंने अपनी शादी के बाद काफी कुछ सहा होता है। वो धीरे धीरे धीरे धीरे जब उनके हाथ में घर का कंट्रोल आता है तब तक वो बहुत ज्यादा हार्ड एंड रफ हो चुकी होती है। मतलब उन्हें अब कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है। अब उन्हें ये मैटर नहीं करता कि कौन रियली उनके घर आ रहा है या जा रहा है, कौन उनके बारे में क्या कह रहा है, क्योंकि शायद उन्होंने एक टाइम पे हर किसी के आगे नजरें झुकाई हैं, उन्होंने हर किसी के ताने सहे हैं। और शायद ये लम्हा सिर्फ माँ ही नहीं, न जाने हर कोई अपने लाइफ में वो इंसान जो थोड़ा सा भी इंट्रोवर्ट है वो सह जाता है। लेकिन एक टाइम आता है जब वो एम्बीवर्ट भी नहीं सीधा एक्स्ट्रोवर्ट में चला जाता है। कोई है आपकी लाइफ में या आप खुद वो इंसान है जिसके अंदर इतना ड्रास्टिक चेंज आया? तो शेयर जरूर कीजिएगा इंस्टाग्राम पे, रेडियो ऑलिव के पेज है, इनबॉक्स में हाय आरजे आकाश, और वो हसीन सा किस्सा जो कभी एकदम से हो गया। अभी तो फिलहाल इस गाने को सुनने के बाद ये लम्हे हसीन हो जाएंगे तो कहीं जाएगा नहीं। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव और दिल से कहते रहिए जी बिंदास।

देखो दोस्त तो तुमने कई बनाए होंगे, स्कूल में दोस्त बनाए, घर के आसपास दोस्त बनाए, जब घर शिफ्ट किया तो वहां भी दोस्त बनाए, लेकिन सबसे जल्दी और सबसे शॉर्ट टर्म में कोई

सिर्फ एक जर्नी के थ्रू। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो दोस्त बनते हैं वो बनते हैं ट्रेन के सफर के थ्रू। जब आप एक लंबे से सफर पर निकलते हैं, सीट एडजस्ट करने के लिए किसी को हेल्प के लिए कहते हैं कि प्लीज क्या आप ये वाली सीट ले लेंगे, या फिर कई बार खाना खाते हुए कोई अगर सोलो ट्रैवलर अलग से दिख जाता है और आप फैमिली के साथ होते हैं तो आप अपनी फैमिली से कहते हैं कि उन्हें भी पूछ दो, बेचारे अकेले बैठे हैं। मुझे लगता है कि दोस्त बनाने के लिए कई बार सिर्फ मौके आते हैं और कई बार बिन कहे हम किसी को समझ जाएं, किसी को उस अकेलेपन में उसको साथ दें, सिर्फ एक कंपनी के लिए खुद से हाथ बढ़ाएं। तो मुझे लगता है कि दोस्ती का हाथ एक सफर से ही शुरुआत होती है। नहीं सोचिए, कोई सोलो ट्रिप पे जा रहा है और वहीं से उसको एक ऐसा दोस्त मिल जाए जिसके बाद उसका कोई भी ट्रिप सोलो रहे ही ना फिर, या फिर आपके अगले सोलो ट्रिप्स के स्टेटस वो भी देख पाए कि अब कहाँ घूम रहे हो जनाब। कभी हुआ है आपके साथ कि ट्रेन के थ्रू कभी कोई एक बहुत अच्छा सफर में दोस्त मिल गया हो? चलो ट्रेन नहीं तो कभी कई फ्लाइट जर्नी, हालांकि शॉर्ट होती है स्टिल, या फिर कभी कोई और जर्नी के थ्रू, बस जर्नी या किसी जर्नी के थ्रू आपको कोई एक दोस्त मिला हो तो उस दोस्त का नाम मेंशन जरूर कीजिएगा। आज इंस्टाग्राम पे रेडियो ऑलिव का पेज है, फॉलो करके इनबॉक्स में हाय आरजे आकाश और आपका मैसेज। फिलहाल तो मेरा मैसेज यही है कि हर गाने की धुन को सुन के दिल से कहो जियो बिंदास। विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड।

0: हम इंसानों का ना एक नेचर होता है कि हम कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते, लेकिन सोचिए वो एक टाइम था जब आप छोटी सी चीज में भी सेटिस्फाई होते थे, क्योंकि आपको पता था यार एक दिन आएगा, अपना दिन आएगा, अपना टाइम आएगा। आखिरकार वो टाइम आ गया, लेकिन स्टिल अभी भी आपको लगता है वो टाइम आया नहीं जो आपको एक्चुअली जीना है।
1: यू शुड नो बिफोर यू स्लीप,
0: देखो कभी वो टाइम आ ही नहीं सकता जब जिस टाइम के लिए तुम इंतजार में हो। वो टाइम पता नहीं कैसा है आपके हिसाब से, कैसा है मतलब, क्या आपकी लाइफ ऐसी होनी चाहिए सिर्फ 5-star होटल जैसा घर हो और उसमें मतलब जितने आपके काम ना उससे ज्यादा तो आपके कर्मचारी हो काम करने वाले, उसके बाद आपको कहीं काम पे जाना ही ना पड़े, दिन भर शॉपिंग, शॉपिंग के लिए बाहर भी क्यों जाना है, यू नो एसी वाला टनल बना देते हैं उसमें भी रेड कार्पेट खुद चलेगा, आपको नहीं चलना है, शॉपिंग करी वापस घर आपको छोड़ा, वो भी हवाई एक यू नो कार्पेट होना चाहिए हवा पे उड़ने वाला, उसके बाद आराम से आप सो रहे हो, ग्रेप्स आपके माउथ में खुद जा रहे हैं, खाना खुद पका पकाया आ रहा है, वर्ल्ड की सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव चीजें आपके पास हैं। क्या आपको लगता है आप ये सब पाने के बाद भी सेटिस्फाई हो जाओगे? फिर आप मोटे होने लगोगे? नहीं नहीं, फैट को कहो खुद निकले बॉडी से। इंसान कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता। तो सोने से पहले याद रखो अपनी वो पहली सैलरी, जिस सैलरी पे जब थे और अब वाली सैलरी की एक्सपेक्टेशन करते थे, और अब आज पहुंच भी गए वहां तक, स्टिल यू आर नॉट सेटिस्फाई। तो सच्चाई तो ये है कि इंसान कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता। आई एम नॉट सेइंग कि एक्सपेक्टेशन मत रखो, खुद से एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है पर औरों से नहीं, इसलिए खुद से उतनी एक्सपेक्टेशन रखो कि खुद को हर वक्त कोसना ना पड़ेगी, यार मैं हूं ही नहीं बढ़िया इंसान। नहीं, तुमने जो किया सबसे अच्छा किया, इसलिए आज तुम यहां तक पहुंच पाए हो। तो खुद को एप्रिसिएशन देना स्टार्ट करो, खुद का मन भी खुद का साथ देगा, समझे? आ रहा हूं वापस, कहीं जाएगा नहीं, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव और दिल से कहते रहिए जियो बिंदास।

स्कूल में जब जाते थे ना तो शुरू के फर्स्ट दो तीन पीरियड तो ऐसे निकलते थे मुंह सड़े सड़े से कुछ लोगों के, एक दूसरे से बात भी करना नहीं पसंद करते थे। लेकिन जैसे एट्थ पीरियड तक आता था, जैसे ही लगता था कि बस अब तो छुट्टी होने वाली है, तब तक पता नहीं क्यों सब पे प्यार आता था, क्योंकि तब दिल खुश हुआ करता था। और हम ह्यूमंस के साथ यही दिक्कत है, जब हम खुश होते ना हमको फिर हर कोई अच्छा लगता है, फिर हम हर किसी को ग्रांटेड ले लेते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं, फिर कहते हैं ठीक है यार चलेगा। और वहीं कहते हैं ना, किसी इंसान को अगर ऑलरेडी बिदका पड़ा हो और उसको हल्का सा और छेड़ दो, बस फिर तो तुम्हारी वो छोटी सी भी चीज है जिसको आज तक वो इतने सालों से लिनियन लेता है, अब तो जनाब वो छोड़ेगा ही नहीं तुम्हें। हाय, दिस इज मी आरजे आकाश, आपके दिल की आवाज 106.3 रेडियो ऑलिव पर मिडनाइट लाउंज के सफर में। फिलहाल समय हो गया मेरे जाने का, हालांकि ये क्यों उल्टा सफर है, यहाँ पर आते टाइम तो मैं बहुत खुश होता हूँ, जाते टाइम मैं दुखी सा हो जाता हूँ। और इस टाइम पे अगर कोई बस मुझे स्टूडियो में आके बोलते ना चलो भाई घर चलें, बस मेरे को गुस्सा सा आ जाता है, बोल मत देना भाई। सच में यार, अपनी मन पसंदीदा जॉब करना, अपनी मन पसंदीदा चीज को करना मैंने लाइफ में सीख लिया है, और मैं आगे भी लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ, वो काम करो जो करने के बाद तुम्हें ये ना लगे कि तुम्हें घर जाना है, तुम्हें कहीं भागना है, जो मन करे कि तुम जो कर रहे हो ना वही सब कुछ है जिसके लिए तुम आज अपना मैक्सिमम टाइम जिसमें लगा रहे हो, अपनी क्रिएटिविटी जिसमें ला रहे हो। इसलिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो, किसी भी चीज के लिए देर नहीं होती, लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट्स। चलता हूं, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जितनी भी धुन मैं चला के जा रहा हूँ, यानी कि एक से एक बढ़िया गाने लगा के जा रहा हूँ, उनको साथ में गुनगुनाते रहिए, ताकि दिल भी सुन के बोलेगा जियो बिंदास, बाय बाय, गुड नाइट।

0: तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग वो शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ
2: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM।

खूबसूरत दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम.
3: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. 106.3.

0: Radio Olive.
1: 106.3 Radio Olive.
2: Gio Bindas.
3: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: Radio Olive.
1: 106.3 Radio Olive.
2: Gio Bindas.

You are listening to Radio Olive 106.3 FM.

Radio Olive, your happiness frequency. 106.3 Radio Olive, Jio Bindas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट.